डब्बों पर रोशनी। मैंने पूछा, क्या हेडक्वार्टर को इत्तला दे दी? उसने मुस्करा कर कहा, नहीं। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? वो चंद लम्हे खामोश रहकर बोला, मैंने रात ख्वाब में अकबर और हुसैन को देखा। अकबर आगे था, चेहरा चमक रहा था, नूर इतना था कि मैं आंखें न मिला सका, और हुसैन उसके पीछे था। मैंने सवाल किया, अकबर में ऐसी क्या खास बात थी? मोहम्मद हुसैन ने सर झुकाकर कहा, अकबर जहां भी होता नमाज शब कभी नहीं छोड़ता था। उसका निकाह हो चुका था, आधा दीन मुकम्मल कर चुका था, मगर हुसैन अभी कुंवारा था। फिर एक राज की बात की। अकबर ने ख्वाब में कहा, फिक्र न करो, हम दुश्मन के हाथ नहीं लगे, हम वापस आ रहे हैं। मैं चौंक गया, क्या मतलब, कैसे? मोहम्मद हुसैन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, वो दोनों शहीद हो चुके हैं, उनके जनाजे रात को पानी के किनारे पर आ जाएंगे। मैंने हैरत से पूछा, लेकिन ये सब बातें तुम्हें कैसे मालूम हैं? मोहम्मद हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा, हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया है। ख्वाब में या बेदारी में? मैंने फौरन पूछा। वो सिर्फ इतना बोला, तुम्हें इससे क्या, बस इतना जान लो वो लौट आएंगे। उसी रात मैं खुद पानी के किनारे पहरा दे रहा था, रात का अंधेरा गहरा हो रहा था। अचानक एक साथी रेडियो पर चीखा, सर जल्दी आए, पानी पर कुछ तैरता नजर आ रहा है। मैं दौड़ता हुआ गया और जो मंजर मैंने देखा वो मेरी रूह पर नक्श हो गया। हुसैन की लाश पानी पर तैरती हुई किनारे लग चुकी थी, और अगली रात अकबर का जनाजा भी बिल्कुल उसी तरह पहुंचा जैसे मोहम्मद हुसैन ने बताया था। और वो मोहम्मद हुसैन जिसकी मारिफत का ये आलम था, वो जिसे लोग यूसुफ इलाही कहते थे, वो इस मकाम तक पहुंचा कैसे? उसका राज यह है कि 19 साल की उम्र से उसकी नमाज शब कज़ा में हुई। उसने कभी किसी को तकलीफ न दी। उसके दिल में गरीबों के लिए दर्द था और वो नहजुल बलागा का दीवाना था। मौला सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजालिस और रज़ादारी उसकी ज़िंदगी का जज़ थी, तो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ख़ास नज़र उस पर क्यों ना होती? क्योंकि नमाज शब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ख़ास ताकीद है, बहन ज़ैनब मुझे नमाज शब में फरामोश न करना।

0: बाबा, अम्मी अभी तक नहीं आई।
1: क्या कहा?
0: अम्मी अभी तक नहीं आई। मुझे और हातिफ को उनके साथ जाना था, लेकिन नहीं आई।
1: कहाँ से वापस नहीं आई?
0: घर पे नहीं है।
2: जुदाई सच में एक जख्म है बेटी, लेकिन जख्म चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, वो एक न एक दिन भर ही जाता है।
0: इस जुदाई ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा।
2: तुम ही कह रही थी कि उसके हाथ में खत नहीं था, तो फिर ये बेखबरी और बेकरारी किस लिए? पूछा नहीं किसी से?
3: क्यों नहीं, हर दिन पूछा मैंने, लेकिन किसी ने कभी भी एक लफ्ज नहीं बताया। बस शुरू में एक बात कही कि वो खिलाफत के खिलाफ साजिश कर रहा था।
0: दर्द फिराक की ताकत नहीं है मुझ में।
2: जब कभी भी तुम्हें जुदाई का एहसास हो तो मेरी सरजनिश करना, मुझ जैसे लोगों को माफ करना कि हमारी खामोशी की वजह से ही तुम्हारा ये हाल हुआ है।
0: आपका क्या कसूर?
2: सब हमारी ही गलती है, वरना उनमें से कोई भी, यहाँ तक के खलीफा भी, हमसे टकराने की जुर्रत ना करते।
3: खुदा तब तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को तब्दील ना करे। हालात खुद बदलने पड़ते हैं। खुदाया मुझे जिंदा रखना ताकि मैं अपनी आंखों से उनकी खिलाफत की तबाही देख सकूं। फरजंदे अली की दावत के लिए काबिलियत की जरूरत थी जो हम में नहीं थी।
2: देखो, वो चाहे अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, नूरे खुदा बुझने वाला नहीं है। इंशाल्लाह इमाम आएंगे और अदालत कायम होगी।
0: इंशाल्लाह।
4: आप लोग तो खलीफा की मुखालफत की बात ऐसे कर रहे हैं मानो उस घर में जो लोग रह रहे हैं वो मुसलमान ही ना हो।
2: शाबाश बेटी, तुम मेरी बात समझ गई हो। जो कोई भी जुल्म के खिलाफ खामोश हो वो मुसलमान तो क्या इंसान भी नहीं हो सकता।
4: तख्त खिलाफत पर बैठा हुआ शख्स जो भी हो, वो चाहे चोर और उच्चका ही क्यों ना हो, उसकी इताअत वाजिब और उसकी मुखालफत हराम है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप ही बताइए, मैं कुछ गलत कह रही हूँ?
0: इन मासूम बच्चों को जरा देखो तुम, आखिर उन्होंने क्या जुर्म किया था जो ऐसी सजा मिली है? क्या कसूर है?
4: इंशाल्लाह वो जल्दी वापस आ जाएंगे। आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो भी खलीफा के खिलाफ कयाम करने निकले थे। हराम काम करते हैं और फिर उसके अंजाम से भी परेशान होते हैं।
3: कौन सा हराम बहू, और किस काम के अंजाम को परेशान बोल रही हो? सिप्ते पैगंबर की दावत?
4: हुसैन रसूल अल्लाह के अजीज हैं और हम पर उनका एहतराम वाजिब है, लेकिन आपको नहीं पता कि उन्होंने क्या किया था?
3: क्या किया?
4: बाबा ने बताया कि सारे उलमा ने उनके कयाम को फितना बताया है, और इतना ही नहीं, उनकी हिमायत करने से भी इनकार कर दिया है। उन्होंने हमारे दरमियान इख्तलाफ डाल दिया।
0: उसे इख्तलाफ नहीं कहते, हक को बातिल में जुदाई डालना कहते हैं।
4: हुसैन जो कर रहे हैं वो हक है? आपके अलावा सारे उलमा और अंसार गलत हैं? बोलिए। बैत का इनकार दीन से खारिज होने के बराबर है।
3: दीन? कौन सा दीन?

0: दीन तो अली थे और अब उनके फर्जंद हुसैन हैं।
1: ये कोई मिरास नहीं जो बाप से बेटे को मिलेगी।
2: शाबाश बेटी, सही कहा। यही यजीद जो तख्त पर बैठा हुआ है, उसे भी तो उसके बाप ने बिठाया है ना।
0: खाक हो उस शख्स पर जो हुसैन और यजीद का मुआजना करे।
2: अली मिंबर पर जाते थे और कहते थे कि ए लोगों, जिसे भी मेरी हुकूमत पर एतराज है वो आगे आए बयान करे। वही अली जिनकी अदालत पर सारी दुनिया हैरान थी। हुकूमत पर तनकीद हुसैन की बाबा के जमाने में हलाल थी, लेकिन आले यजीद के यहाँ हराम है।
0: जुल्म के खिलाफ खामोश रहना, ऐ मेरी बेटी, मुजाहिद को भी दुश्मन बना देता है।
1: जुल्म, जुल्म, कौन सा जुल्म? बा खुदा मैं समझ नहीं पा रही हूँ।
3: समझ रही हूँ, तुम सिर्फ अमन और बद अमनी को देखती हो। एक मर्तबा अपने माजी पर नजरें डाल लो, तुम हक ना हक का फर्क समझती हो ना। रुक जाओ नायला।
1: मेरे बाबा ने जो तुम्हारे साथ किया उसका बदला मुझसे ले रहे हो?
3: मैं बदला ले रहा हूँ?
1: और क्या कर रहे हो तुम?
3: बहस तुमने ही शुरू की थी।
1: गलत मैंने किया?
3: तुम ही ने बात को बढ़ाया और खामोश नहीं हुई।
1: तुमने क्या किया?
3: क्या किया?
1: बस बैठे बैठे मुझे देख रहे थे।
3: तुम्हें उनसे क्या मतलब?
1: मजा आया होगा मेरी बेइज्जती।
3: उन्होंने अपना अकीदा जाहिर किया, उसमें तुम कहां से आ गई?
1: मैं तुम्हारी बीवी हूँ या नहीं? अगर हूँ तो मेरा साथ दो, चाहे मैं गलत ही क्यों ना हूँ।
3: नायला, नायला, रुक जाओ। तुम्हें उसी दिन से मेरे और घर वालों के अकीदे का पता है जब तुमने दिल की बात की थी। वैसे ही मैं अपने घर वालों की वजह से परेशान हूँ, मेरी परेशानियां और मत बढ़ाओ।
1: मैं अपनी बात कह चुकी हूँ, तुमने मेरे बाबा की शर्त को कबूल किया था। अलवी अपने रास्ते पे हैं और तुम अपने रास्ते पे, बात खत्म।
3: ला इलाहा इल्लल्लाह।
4: मुझे बहुत बुरा लगता अगर तुम देर से आते। बहुत अच्छा किया तुमने जो आ गए। तुम्हें पता चल जाए ना कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए क्या सोचा है तो तुम्हारे होशो हवास उड़ जाएंगे। सच में
3: सब खैरियत तो है?
2: सब खैरियत है, हमारी सोच से भी बेहतर। मक्के के कारवां को मैंने दो लोगों की जगह रखने को कहा है। शायद इस हज और ज़ियारत की वजह से तुम्हारा यह रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो।
1: शुक्रिया बाबा, आपने जो मेरी आरजू पूरी कर दी, खुदा का शुक्र है। इतनी परेशानियों के बाद इस सफर से ज्यादा अच्छा और भला क्या हो सकता है।
2: तुम खुश नहीं हो?
3: असल में मुझे इसकी तवक्को नहीं थी, सुन के हैरान हो गया हूँ।
2: हज और ज़ियारत का मौसम है ऐ बंदे खुदा, मेरे कहे बगैर ही तुम्हें उस बारे में सोचना चाहिए था।
5: कहाँ है?
4: कौन?
5: अगर उसे इतनी अक्ल नहीं है तो आपको समझना चाहिए, शोहर और बच्चों के बगैर रुकना ठीक नहीं।
1: बिस्मिल्लाह।
5: तलमा!
4: किसे ढूंढ रहे हो नईम? तुमसे किसने कहा कि तलमा यहाँ आई है?
2: वो तो जाने वाली थी, हो सकता है शाम की तरफ चली गई हो।
5: उसके बच्चे और सारा सामान तो घर पर है, फिर शाम क्यों जाएगी?
4: आखिरी बार मैंने उसे शादी में देखा था, घर नहीं लौटी क्या अभी तक?
5: कल रात मेरी हालत ठीक नहीं थी, अपने होश में नहीं था। घर पहुंचा तो सुबह तक सहन में ही सोता रहा।
2: कूफे के जर्रे जर्रे को छानो और उसे ढूंढो, और जब तक वो ना मिले वापस नहीं आना। तिजारत खाने की फिक्र ना करना, मैं और हिलाल देख लेंगे।
4: जरूर वापस आ जाएगी, खुदा पर भरोसा रखो।
2: खादिम,
5: आतिफ, अपने भाई का ख्याल रखना।

0: बस एक, शायद एक घंटे के बाद दूसरा जाएगा। पर क्यों, आप पिछाना चाहते हैं क्या?
1: तमाम मुसाफिरों पर नजर रखना, कोई अकेली खातून किसी काफिले में नजर आए तो मुझे जरूर बताना।
0: अगर नाम पता चल जाए तो? यानी आपकी बीवी है? नहीं,
1: ख्याल रखना इस बात के किसी को खबर ना हो।
0: बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बेफिक्र रहे, मैं ढूंढ लूंगा। बेवकूफ आदमी।
2: शाम का काफिला चल पड़ा है।

0: मुझे तुमसे कोई काम नहीं। बहुत अच्छा किया। जिस शहर में तुम्हारा शौहर बदनाम हो वहां रुकना मुनासिब नहीं। ये लो लो, आज के बाद जहां भी जाओगी
1: आगे बढ़े
0: हमारे खानदान का जिक्र जरूर करना कि हम खान के साथ भी अच्छा सलूक करते हैं।
1: हरकत करें,

0: से क्या कहूं, मेरी तो हंसी छूट गई।
1: सलाम नईम भाई, कपड़ों के बारे में कुछ बात करनी है?
2: नहीं अभी नहीं, बात
0: इससे हमें काफी फायदा हो।

0: सारे शहर में फैल जाओ, कूफे की गली कूचों की खाक छान मारो, जिसके बारे में भी शक हो उसका नाम मुझे बताओ। इसे रखो। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, निकलो, निकल जाओ। खामोशी के साथ काम करना। शहर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि नईम की बीवी उसे छोड़कर गई है, समझ गए?
1: हम उन्हें ढूंढ लेंगे।
0: इसे ले जाओ, आपस में तकसीम कर लो, और जो भी पहले खबर लेकर आएगा उसे दो बोरियां और दूंगा।
1: हम उन्हें ढूंढ लेंगे, आप मुतमईन रहें। खुदा हाफिज़।

0: ये कहां और चीन से आने वाला माल कहां? इसे कूफे में भेजने में इतना वक्त लगता है कि इसके लिए पैसा और वक्त खर्च करने का कोई फायदा नहीं। देखा इन सुस्त और काम चोरों को, यही चीज तबाह कर देती है।
1: माजिद, माजिद।

0: से लोगों को सर पर नहीं चढ़ाना, उन्हें उनका हक लौटाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा एहसान जताते हुए लौटाओ ताकि उनका सर हमेशा झुका रहे। आ जाओ। ये लो, सफर का खर्चा है।
1: मेरे पास जरूरत के लिए काफी है, अगर इसे लूंगा तो बोझ बन जाएगा मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जो लड़की इस वक्त तुम्हारे साथ है वो अहद की लड़की है बेटा। बहुत खर्चे हैं उसके, बहुत नाजो नखरे में पली है, उसका सब कुछ बदल गया है, जिंदगी, ओढ़ना बिछौना, अकीदा और इबादत। सदका नहीं है, अपनी मोहब्बत की कमाई समझ कर रख लो। अच्छी जिंदगी जियो। मैं नायला की जिंदगी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ।

0: खुदा की कसम, अगर तुम हनीफ को बेटे ना होते तो मैं माफ कर देते।
1: जो करना है करो, लेकिन अली पर लान क्यों करते हो? बहुत बस, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और मारो, मारो उसे, और मारो।
0: जब तक जिंदा हो तब तक हमारे दुश्मन हो।

0: अभी तक यहाँ क्यों बैठे हो?
1: मैं तो तैयार हूँ, सब कुछ किया पर वो नहीं आ रहा, मेरी बात ही नहीं सुनता।
0: किसी काम के नहीं हो तुम। अलमान क्या है, कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गए हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? जहन्नुम तो नहीं जा रहे हो ना? उठो चलो, देर की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
2: मैं नहीं जाऊंगा।
1: अगर चलोगे तो दादाजी की तलवार चुपके से उठाएंगे और दोनों मिलकर खेलेंगे।
2: अंधे हो, देखा नहीं वो हिलाल को तोहफे में दे दी है?
1: शायद हिलाल भी आ जाए।
0: रुकना है, रुक जाओ, सड़ो जहन्नुम में। कुछ देर बाद जब अंधेरा होगा और भेड़ियों की आवाजें आने लगेंगी और भूख के मारे तुम्हारी जान निकलेगी, तो फिर तुम्हें दादा के घर की कीमत पता चलेगी। उठो चलो हमारे साथ।
2: कसम से मैं किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, बस यहाँ रुककर अम्मी का इंतजार करूंगा।
0: तलमा आते ही पहले तुम्हें ढूंढेगी, फिर चाहे तुम यहाँ रुको या अपनी फूफी के घर रुकना चाहो। चलो
2: छोड़िए मुझे।
0: तो क्या करूं? मेहंदी पसंद है तुम्हें? मेहंदी पसंद है ना इसे? वादा करता हूं तुम्हारे लिए मेहंदी ले आऊंगा। तुम्हारे
2: नहीं चाहिए, मुझे मेहंदी भी नहीं चाहिए।
0: क्यों?
2: डर लगता है।
0: किससे डर लगता है?
2: दादा से डर लगता है।
0: दादा ने शादी में तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे सर पर सिक्कों से सदका उतारा था और नाचे थे। क्या तुम्हें पता नहीं कितना चाहते हैं वो तुम्हें? शादी में गए थे ना तुम?
2: मुझे नहीं जाना था शादी में, अम्मी ने जबरदस्ती भेजा, कहा बहुत काम है, इसीलिए राजी हुआ मैं।
0: क्या फूफी से नहीं मिलना चाहते?
2: मिलना है, लेकिन दादा।
0: दादा क्या?
2: हमेशा मुझ

0: बाबा की वजह से। यकीन नहीं हो रहा है ना हतीफ, तुम बताओ।
1: चिल्ला रहे थे कब?
2: इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे? तुम तो सामान लेकर चले गए थे ना, तो अलवियों के मोहल्ले में क्या कर रहे हो?
3: हज पे जा रहा हूँ।
2: खुदा की पनाह में।
3: जाने से पहले आपसे मिलने आ रहा था।
2: जिस दिन अली पर लानत की थी उसी दिन सोच लेना चाहिए था। खुदा के बंदों ने ये हाल कर दिया है तुम्हारा, सोचो खुदा तुम्हारे साथ क्या करेगा।
3: मैंने कभी लानत नहीं की।
2: सारे शहर ने तुम्हारी आवाज सुनी थी, तुमने नहीं सुनी?
3: मैंने कभी जबान से लानत नहीं की, जो भी कहा वो तकिया था।
2: या तो मार की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, या तुम्हें तकिया का मतलब ही नहीं पता।
3: ये मामला मेरे और ईमान के दरमियान है। बदनाम जरूर हुआ हूं मैं, लेकिन मैंने नायला की जान बचाई है। अगर आपके मसलक में इसे गुनाह कहते हैं, हाँ तो मैं गुनाहगार हूं। हमारा मसलक अलग नहीं है।
2: जिस चीज ने तुम्हें अंधा कर दिया है उसे इश्क कहते हैं। इमाम को अपनी हवस का बहाना बनाया तुमने ताकि आहद की बेटी को भी हासिल कर लो, और सीना चौड़ा करके ये भी कह सको कि तकिया करके तुम अम्मार बन गए।
3: मेरा हिसाब किताब खुदा पर छोड़ दे। जिस जहन्नुम में आपने मुझे फेंक दिया है वहां खुदा भी है, जिसकी रहमत और करम आप जैसी नहीं है।
2: हज पे जा रहे हो ना? मैं राजी नहीं तुमसे।
3: आखिर आज तक मेरी वजह से आपको क्या परेशानी हुई है? ये नाराजगी और गुस्सा छोड़ दीजिए अब, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता।
2: मुझे क्या परेशानी है? पूरे शहर की लानत और मलामत झेल रही हूँ। सिर्फ तुम्हारी वजह से शहर में किसी ने भी मेरे खत पर दस्तखत नहीं किया। खुदा और बंदों के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा मुझे।
3: कौन सा खत?
2: मैंने फिर खत लिखा है।

0: कैसे माफी मिलेगी मुझे? जब तक माफ नहीं करोगी मैं यहां से जाऊंगा नहीं।
1: उस खत को उसकी मंजिल तक पहुंचा दो, शायद शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं।

0: तुम सही थी। नईम हर जगह अपनी बीवी को ढूंढ रहा था, कहीं नहीं मिली। वालिया का भी कुछ पता नहीं है। हजार बार मैंने उसके बारे में सोचा। जुनैद का कारनामा भी कोई जाती इंतकाम नहीं था, उसके पीछे भी तलमा का हाथ था। उसी ने जुनैद को भड़काया है
1: शायद।

लेकिन मैंने शादी में औहद को देखा कि उसने अपने गुलाम को कोई इशारा किया और फिर गुलाम ने वालिया के कान में कुछ कहा। वालिया जल्दी जल्दी वहां से बाहर निकल गई। मैंने उसका पीछा किया तो वो तिजारत खाने की तरफ जा रही थी। मैं काफी देर वहां खड़ी रही पर वो बाहर नहीं आई। वापसी में मैंने गुलाम और तलमा को उसी तरफ जाते हुए अपनी आंखों से देखा था। मैंने उनका पीछा किया और छुप कर देखा तो वालिया हैरान और परेशान चीख चीख कर कह रही थी कि मैं कातिल नहीं हूं। मैंने अपने कानों से उसे कहते हुए सुना था कि ससुर और बहू की लड़ाई में मेरा क्या लेना देना। मुझे लगता है औहद ने तलमा का कत्ल करवा दिया है। मेरे अजीज भाई, हमें उस खानदान से सिवाय परेशानियों के और कुछ नहीं मिला। अब तुमने वहां शादी कर ली है, तुम्हें मुबारक हो, लेकिन उनसे रफ्तो आमद और खाना पीना अलग कर लो। उनसे जितना दूर रहोगे अच्छा रहेगा।

0: आप शादी में तलमा को बुलाने पे क्यों इसरार कर रहे थे? ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता है?
1: जब तुम्हें होश आ जाए और इंसान बन जाओ फिर आ जाना मुझसे बात करने के लिए।
0: मैं होश में हूँ, अभी बताइए मुझे आपके दरमियान क्या चल रहा था जो मुझे पता नहीं था। मैंने पूछा क्या बात है?

0: अच्छी तरह मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। अपनी बीवी को तलाश कर रहे हो, बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें उसकी आकृति ठिकाने लगानी चाहिए थी, जो तुमने नहीं किया इसलिए मैंने ठिकाने लगा दिया।
1: क्यों?
0: तुम्हें बर्बाद करना चाहती थी, जो मैंने नहीं होने दिया।
1: बर्बादी। तो कहाँ ठिकाने लगाया बताइए मुझे, मेरी बीवी कहाँ?
0: मार दिया उसे।
1: मार दिया।
0: डरो मत, मैंने अपने हाथों पर उसका गंदा खून नहीं लगने दिया। उसी से यह काम करवाया जिसके शौहर को तुमने नायरा को मार डालने के लिए भेजा था। अपने शौहर से बेहतर निकली हो तुम, बेफिक्र रहो। औहद के बेटे के लिए तलमा से भी अच्छी लड़कियां हैं।

0: बात है, बुद्ध की तरह क्यों खड़े हो? अच्छे से तलवारबाजी करो।
1: अभी बताता हूँ तुम्हें कि तलवार कैसे चलाते हैं। डरपोक कहीं का जी ले।
2: क्या कर रहे हो अलवान? दिमाग खराब हो गया क्या? भाई को मारोगे?
0: देखिए ना बाबा, क्या हो गया इसे? ना मुझे तलवार चाहिए और ना ही भाई।
2: कहा था तलवार को म्यान से बाहर नहीं निकालना। उठाओ, इधर आओ, इधर। तोहफा पसंद नहीं आया? अच्छा नहीं लगा क्या? शायद ये थोड़ी वजनी है, दूसरी ला दूं क्या?
1: अम्मी कहाँ है?
0: बाबा, ये आपका है क्या?

0: मेरे छोटे से खानदान को सलाम। नईम, आतिफ और मेरे बेटे अलवान। प्यारे बच्चों, मैं जाते वक्त तुम लोगों को खुदा हाफिज नहीं कर पाई। एक लंबे सफर पर जा रही हूँ और तुम्हें खुदा के हवाले कर रही हूँ। अपना और अपने बाबा का ख्याल रखना। तुम्हें फिक्र हो रही थी ना, खुदा का शुक्र है।
1: खुदा का शुक्र है।
2: अपनी माँ के बारे में पूछ रहे थे ना?
0: तुमसे बात कर रहा हूँ।
3: मुझे यकीन है अम्मी मेरे बिना कहीं नहीं जा सकती, वादा किया था उन्होंने।
0: अब चली गई है तो क्या करूं? खत तो देख लिया ना तुम अलवान को पढ़ के सुनाओ।
1: बाबा सच कह रहे हैं।
0: पढ़ के सुनाओ।
3: सच कह रहे हैं पापा।
2: कहाँ जा रहे हो?
3: मेरे सवाल का जवाब तो नहीं दिया आपने। दिया? दादा से पूछने जा रहा हूँ।

0: क्या बात है, जाग गई है? बस बस, मिल गया सुकून?
1: अकेले ना जाए, मुझे याद आएगी।
0: इतना मत रो बेटी, इधर मेरे पास आ जाओ। आ जाओ बेटी, आ जाओ मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। यहाँ, रोते नहीं है।
2: कोई फायदा नहीं जाने का।
0: चुप हो जाओ।
2: रुक जाओ।
3: मैं इस तरह से हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती
0: मेरी जान।
3: मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती
0: मेरी जान। रो नहीं।
3: अब शायद जिंदान की दीवार।

0: उसे टेक लगाकर बैठना ही मेरे इंतजार की शिद्दत को कम कर सकता है।
1: सो जाए तो चली जाना,
0: सोने का वक्त गुजर गया है, अब नहीं सोएगी।
1: इतने दिन से हिलाल मामू से मिलने की जिद कर रही थी तुम। मैं तुम्हारी जगह होती तो अभी जाके उसके कांधे पे सवार हो जाती। चलो चुप हो जाओ, जाओ।
2: सवार होके क्या करूं? मुझे पापा की याद आ रही है। शायद मेरे इंतजार के दर्द को भी संतान की दीवारी कम कर सकती है।
1: सुन लो,
2: मुझे पापा की याद आ रही है।
1: ठीक है, ठीक है, रो मत।

0: बासित की जुदाई हम सभी के लिए काफी है, तो मजीद हमारे दर्द को ना बढ़ाओ।
1: तुम्हें क्या हो गया है हिलाल मेरे भाई? कोई खबर मिली है?
0: कैसी खबर? देख रही हो कितना रो रही है बच्ची। अगर बाहर ले जाने से चुप होती है तो बाहर ले जाओ।
2: अगर मुश्किल नहीं तो इसे भी साथ ले जाओ, अली को मैं देख लूंगी।
1: आओ जाओ मेरी बच्ची, जाओ अली को बोसा दो, बोसा दो अली को। शाबाश, जाओ खुदा तुम्हारी हिफाजत करेगा, जाओ।

0: माया, दोबारा ना मिल सके तो माफ कर देना।
1: काफिला निकलने तक मेरा इंतजार करना। तुम्हारे जाने से पहले जरूर आ जाऊंगी, इंशाल्लाह जरूर आऊंगी।
2: बस बस छुपा जाओ, छुपा जाओ, सो जाओ, सो जाओ।

0: सर की पट्टी नहीं मिल रही है।
1: सामान भी बांध लिया? माँ से माफी मांगे बिना ही मक्के जा रहे हो तुम?
0: आपकी शर्त बड़ी सख्त थी, लेकिन फिर भी उसे मानकर मैं आपसे माफी मांगने आया।
1: खुदा का लाख लाख शुक्र है।
0: लेकिन उस दिन मेरे जहन में जो सवाल पैदा हुआ था, जब तक उसका जवाब नहीं मिलेगा मैं वो खत हरगिज नहीं लूंगा।
1: पूछो, जो भी सवाल है पूछो।
0: आपने हबीब के खत पर दस्तखत करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, और आपने देखा भी है कि अगर खत पकड़ा गया तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। तो फिर आप अपने बेटे की जान पे जुआ क्यों खेल रही हैं?
1: ये कैसी बातें कर रहे हो हिलाल? कैसा जुआ? तुम मेरे पास अल्लाह की अमानत हो। तुम जब पैदा हुए थे तो अली से भी ज्यादा कमजोर थे। मैंने अपनी जान लगा के तुम्हें पाला है, बड़ी सख्तियों में पाला है बेटा तुम्हें। तुम्हारी तलवार के हर वार और हर तीर के लिए नजर उतारी है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें आखिरत की सआदत का रास्ता दिखाऊं। मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, ताकि तुम्हारा हाथ औलाद अली के दामन से अलग ना हो।
0: आप अपने बेटे को नहीं जानती। अगर खत का मामला ना भी होता तब भी मैं इमाम से मुलाकात के लिए मक्का जाता।
1: जानती हूं, मैंने तुम्हें पाला है, अच्छी तरह जानती हूं।

0: इस सफर का खर्च है। मेरे बेटे, मेरे लखते जिगर, मेरी आंखों की ठंडक के लिए बस जब इमाम के पुरनूर चेहरे पर तुम्हारी निगाह पड़े तो मेरी तरफ से भी जी भर कर उनकी ज़ियारत कर लेना।
1: ये भी बहुत खूबसूरत है।
2: मुझे भी बहुत पसंद है।
3: मेरी सलीकेमंद बेटी तुम्हारे किस काम आएगी?
2: मैं सोच रही हूँ पर्दा बना लूँ।
1: कहाँ के लिए?
2: बेटी के कमरे के लिए।
1: शायद बेटा हो तो फिर
2: अलवान है।
3: आहत
1: बिस्मिल्ला, ये क्या तरीका है?
3: आहत कहाँ है?
2: अलवान क्या हुआ बेटा?
3: आपने क्या किया है उनके साथ? कहाँ भेजा है मेरी माँ को? मैंने खुद सुना था अपने कानों से। आपने कहा था फूफा से चली जाओ। बच्चा नहीं जो किसी

0: कर लूंगा। बताइए मुझे, जवाब दीजिए, कहाँ गई है मेरी माँ?
1: ये क्या कह रहा है आहत?
2: खत? कौन सा खत?
0: मेरी माँ का खत।
2: तो उसने खत लिखा था? मैंने कहा था उस जलील औरत की फिक्र करना छोड़ दो।
1: बाबा,
0: मेरी माँ का नाम इज्जत से ले।
1: अलवान,
2: यहाँ मेरे पास आओ। आओ, आ जाओ। पहले आंसू साफ करो।
0: खुदा के लिए माँ से कहिए वापस आ जाए।
2: ठीक है, वापस आ जाएगी।
3: Every child deserves a place where they feel safe, secure, valued, inspired, and loved. Welcome to Al Muntasir Islamic International School, where learning begins with care, confidence, and compassion. Give your child a place to belong, learn, and flourish. Admissions are now open at Al Muntasir Islamic International School. Come and discover a nurturing environment where every child matters. We are committed to excellence enriched by faith.

में लोगों को आजाद करने के लिए भेजा था, जिस रसूल को कायनात के लिए बल्कि आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा था, उस रहमत से ये उम्मत महरूम हो रही है। इसलिए आपके सामने दो चार मारूजात पेश करना चाहता हूं। अवलन ये कि जो भी मुनासिबत होती है, चाहे विलादत की मुनासिबत हो, शहादत की मुनासिबत हो, वफात हो, जमात या कम्युनिटी किसी प्रोग्राम को मुनअक़िद करती है, किसी प्रोग्राम को रखती है, उस प्रोग्राम का मकसद फ़कत एक एम्प्टी रिचुअल यानी फ़कत एक रस्म नहीं है। इस फर्श अज़ा पे आके बैठना, मजलिसों को सुनना एक रस्म नहीं है, बल्कि इसको इसलिए रखा गया है ताकि उस शख्सियत, जिस शख्सियत के बारे में तज़किरा हो, उस शख्सियत की ज़िंदगी से उन जौहरात को लेकर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ढाल सकें जो जौहर वो हमारे लिए छोड़ चुके हैं। अगर हम रस्मन मजालिस में आते हैं, अगर हम इसलिए मजलिसों में आते हैं कि हम एक रस्म को अदा करें, तो मेरे अजीज दोस्तों, मजलिसों में आते रहेंगे मगर हमारे अंदर कोई बेदारी, कोई तरक्की पैदा नहीं हो सकती जब तक कि हम इस रस्म के साथ उन चीज़ों के अंदर गौर व फिक्र न करें, उन दुरूस और ज़िंदगी अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से अगर हम वो चंद लम्हात उनकी ज़िंदगी के ले न सके जिनको हम अपनी ज़िंदगी में ढालें, तो हमारी और आपकी यह रस्म एक रस्म रह जाएगी। लिहाजा दो चार बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अव्वलन ये कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ऐसे मौके के ऊपर दुनिया में तशरीफ लाए जबकि असनाम और बुत परस्ती की शिद्दत थी। खुदावंद ताला को कायनात फरामोश किए हुए थी। पैगंबर इस्लाम का इस दुनिया में आना एक रोशनी की मानिंद था। पैगंबर इस्लाम का इस कायनात में इस्लाम के परचम को लहराना लोगों के लिए बाएसे आज़ादी बना, लोगों के लिए आज़ादी का एक मकसद बना। इसीलिए खुदावंद ताला ने पैगंबर इस्लाम को भेजते ही ये फरमाया, वमा अरसलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ए मेरे हबीब, हमने तुम्हें तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा। यानी पैगंबर इस्लाम को खुदावंद ताला ने कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब इस रहमत को हम कैसे समझें, यह रहमत हमारे और आपके लिए क्या चीज है, इस रहमत को हम किस अंदाज से समझें, ये हर इंसान जो जौहर जिंदगी पैगंबर से लेना चाहे वो उस जौहर को पैगंबर की जिंदगी से ले सकता है, मगर रहमत आलमीन बनाकर पैगंबर इस्लाम को खुदावंद ताला ने भेजा इसलिए ताकि वो अपनी रहमत के साथ इंसान को इंसान बना सके, ताकि वो अपनी रहमत के अंदाजे के अंदाज में और उस अंदाज से अपने नोबल कैरेक्टरिस्टिक से, अपने किरदार से कायनात के सामने उस जौहर को पेश करें जिस जौहर का इंसान मुस्तहिक है। इंसान चाहता यह है, इंसान अपनी जिंदगी के अंदर अपने खुद के मकसद को, अपने जिंदगी के मकसद को समझने के लिए कोताही करता है, जबकि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलावतुल्लाहि व सलामु अलैह इरशाद फरमाते हैं मौलाए कायनात के, ऐ इंसान, बीमारी का इलाज तुम्हारे अंदर है मगर तुम उस इलाज को देखते नहीं हो। फिर फरमाते हैं कि बीमारी भी तुम्हारे अंदर ही है
मगर उस तुम इस बीमारी को

जानते नहीं हो या देखते नहीं हो। फिर अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, अतज़ामु अन्नक जुर्मुन सगीर, ए इंसान क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें मैं एक इनसिग्निफिकेंट मास हो, वफीकन तवल आलमुल अकबरो, जबकि तुम्हारे अंदर एक आलम वजूद रखता है। अब इंसान की जिंदगी में इंसान खुद अगर अपने वजूद को ना समझ पाए, अगर कमालात की मंजिल को इंसान खुद हासिल करना ना चाहे, तो इंसान की खुद अपनी कोताही है। वरना पैगंबर इस्लाम को खुदावंद ताला ने रहमत बनाकर इसलिए भेजा कि वो अपनी रहमत के अंदाज में इंसान को अपने कमाल तक पहुंचा सके। ओ अल्लामा इकबाल कहते हैं इंसान के मुताल्लिक, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ए इंसान, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर। मैं इसका तर्जुमा नहीं करूंगा इसलिए कि आज तकरीर उर्दू में है। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तुम्हारी जो मंजिल है, तुम्हारा जो मकाम है, वो पहाड़ों से बुलंद मकाम है। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। इसी जौहर को, इसीलिए पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आए, और आने के बाद पैगंबर इस्लाम ने दफअतन, एक के बाद दीगर पैगंबर इस्लाम ने तरबियत इंसानियत की इब्तिदा की, ताकि इंसान एक तरबियत को पाए, ताकि इंसान एक कमालात की मंजिल तक पहुंच जाए। पहली चीज पैगंबर इस्लाम को यह करना थी कि लोगों को आजाद करें उन अफकार से, उस फिक्र से लोगों को आजाद करें जो फिक्र उनके जहनों को जकड़ी हुई थी, जिस फिक्र के अंदर वो आजाद नहीं हो पाते थे। जनाब नूह ने भी यही काम किया, जनाब इब्राहिम ने भी यही काम किया। अंबिया की जितनी भी फहरिस्त आपके सामने पेश करूं, हर नबी को खुदावंद ताला ने भेजा, हर नबी ने अपनी कौम के साथ एक काम किया। क्या काम? उस कौम को आजाद किया उन चीजों से जो चीजें उनको जकड़े हुए थी। मिसाल के तौर पे जनाब इब्राहिम का तस्करा आप सुन चुके हैं, बार बार सुन चुके हैं कि जनाब इब्राहिम ने बुतों को तोड़ा। मगर बुतों को तोड़ना जनाब इब्राहिम का मकसद नहीं था, कभी भी नहीं। बुतों का तोड़ना जनाब इब्राहिम का मकसद नहीं था। जनाब इब्राहिम का मकसद ये था कि लोगों के जहनों को एक शॉक ट्रीटमेंट देके, एक अवेकनिंग इंसान के अंदर एक जाग को पैदा करे, ताकि इंसान बेदार हो जाए, उसके अंदर एक बेदारी आ जाए। ये मकसद था जनाब इब्राहिम का। जब जनाब इब्राहिम ने, आप जानते हैं जनाब इब्राहिम का वाकया आप सुन चुके हैं, कुरान मजीद सूरह अंबिया के अंदर खुदावंद ताला जनाब इब्राहिम का तस्किरा करता है कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आके अपने बाप से कहा, कौन? आज़र। उनसे कहा, जो उनके बायोलॉजिकल फादर नहीं है, मगर उनसे आके कहा कि आप ये क्या करते हैं, ये किन चीज़ों की पूजा करते हैं, ये किन चीज़ों को आपने तमाशील बनाकर आपके सामने रखा है। तो जवाब में एक अजीब और गरीब जवाब जो सब देते आए हैं कि हमने अपने आबाओ अजदाद को ये करते देखा है, हमने अपने आबाओ अजदाद को करते देखा है। तो जनाब इब्राहिम कहते हैं, अगरचे आपके आबाओ अजदाद गुमराही में थे, फिर भी आप यही करते आए हैं। फरमाया, हाँ, ये हमारे आबाओ अजदाद ने किया है। उसके बाद जनाब इब्राहिम ने तज़किरा करते करते एक मरतबा इन लोगों से कहा कि मैं तुम्हारे इन बुतों के साथ, मैं उनके साथ डील करूंगा, जब तुम लोग, जब आप लोग शहर में ना होंगे। तो कहते हैं कि शहर में एक त्योहार था, एक फेस्टिविटी थी, उस शहर के बाहर पूरा शहर निकल गया। जनाब इब्राहिम ने फजअलहुम जुदादन इल्ला कबीरन लहुम, जनाब इब्राहिम ने तमाम बुतों को तोड़ दिया, कोई नहीं था शहर में, तमाम बुतों को तोड़ दिया। जब बुतों को तोड़ दिया, सिवाय एक बड़ा बुत जनाब इब्राहिम ने छोड़ दिया, ताकि ये बड़े बुत से आके पूछे,
ये शॉक ट्रीटमेंट जनाब इब्राहिम दे रहे हैं। जब ये लोग वापस आए तो पहला सवाल किया, मन फअल हाज़ा बिआलिहतिना,

किसने किया है ये हमारे खुदाओं के साथ? काला समिअना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहु इब्राहिम, हमने सुना है कि इन बुतों के बारे में एक बच्चा, एक नौजवान इनके बारे में तज़किरा करता था, उस नौजवान का नाम है इब्राहिम। फरमाया फ़अतु बिही अला आयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून, ऐसा करो कि उस बच्चे को लोगों के सामने लेकर आओ ताकि सब देखें हम इसके साथ क्या करते हैं। जनाब इब्राहिम को लेकर आए, बचपना है जनाब इब्राहिम, यानी छोटे से हैं अभी, जवानी भी नहीं आई है, यूथ। आए जनाब इब्राहिम, पूछा अअंत फअलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम के तुमने किया है ये हमारे खुदाओं के साथ? फरमाया क्यों इस बड़े को नहीं पूछते जो बड़ा खड़ा हुआ, लअल्लहुम यंतिकून, अगर ये तुमसे बात कर सकता है तो तुम इनसे पूछो, अगर ये बड़ा वाला जो है, अगर ये तुमसे बात कर सकता है तो तुम इससे पूछो कि क्या किया, क्यों हुआ, कैसे हुआ। कुरान के अल्फाज, खूबसूरत अल्फाज में खुदावंद ताला इरशाद फरमाता है, जब जनाब इब्राहिम का ये जुमला सुना, फरजऊ इला अनफुसिहिम, एक शॉक लगा और एक इंट्रोस्पेक्शन शुरू हुआ अंदर से, आपस में खुद गुफ्तगू करने लगे, ये बात तो सही है, इस बच्चे ने सही बताया, अगर ये बोल सकता तो बता देता कि किसने तोड़े। एक बेदारी पैदा हुई, उस बेदारी के लिए जनाब इब्राहिम को खुदावंद ताला ने कायनात दुनिया के अंदर भेजा ताकि उन लोगों के अंदर एक आजादी को, बेदारी को पैदा करे, ताकि लोग आजादी से खुदावंद ताला को देख सकें, बुत परस्ती छोड़ चुके। उसके बाद जनाब ईसा आए, ईसा के मूसा आए, मूसा के बाद ईसा आए, पैगंबर इस्लाम के जमाने में जब पैगंबर इस्लाम आए हैं तो दुनिया में घुप अंधेरा था, घुप अंधेरे से मुराद जाहिलियत का जमाना था, और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को खुदावंद ताला ने भेजा ताकि लोगों को अपने कमाल तक पहुंचा सके। तो खुदावंद ताला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिलआलमीन, ऐ मेरे हबीब, हमने तुम्हें तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर। उसके बाद खुदावंद ताला सूरह जुमा में इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ी बअथ फिल उम्मीयीन रसूलन मिन्हुम, वो अल्लाह है जिसने अहले मक्का के दरमियान उन्हीं लोगों में से एक रसूल को पैदा किया, रसूल को भेजा, बअथ रसूलन मिन्हुम, उस रसूल का काम क्या था, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उस रसूल का काम क्या था, आयाते परवरदिगार की तिलावत करे, यतलू अलैहिम आयातिही, उनके सामने तिलावत करे कुरान मजीद की आयाते परवरदिगार की, वयुज़क्कीहिम, और उनके अंदर एक प्यूरिफिकेशन को पैदा करे, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन लोगों को ये किताब, लफ्ज़ किताब खुदावंद ताला ने इस्तेमाल किया है कि उन लोगों को उस किताब की तालीम दे, वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उस किताब की हिकमत उनको तालीम करे, वो इनकानु मिन कब्लु लफी ज़लाल मुबीन, ये पैगंबर इस्लाम का काम था। किताब क्या करती, ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, ये वो किताब है कि हर खुशकुतर इस किताब के अंदर आपको मिलेगा। ये किताब क्या करेगी, आपको डेवलप करेगी, ये किताब क्या करेगी, परवरदिगार बताएगी, ये किताब क्या करेगी, आयात परवरदिगार से आपको आशना करेगी, ये किताब क्या करेगी, हर मर्ज का इलाज इस किताब के अंदर आपको नजर आएगा, ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। किसके हाथ भेजी, रसूल के, इस किताब में जो कुछ भी है ये आपके सामने वो लेकर आया है जिसको मैंने रसूल मुंतखब करके भेजा है, जिसको मैंने रसूल बनाकर भेजा है। ये इसलिए नहीं आया कि आप लोगों के सामने ऐसे ऐसे मोजिज़ों को दिखाए ताकि आप उसकी रिसालत पे ईमान रखें, नहीं, ये इसलिए आया है कि आप लोगों को बुलंदियों तक पहुंचाए ताकि कमालात इंसान, इंसान अपने कमालात को हासिल कर सके, इसलिए हमने इस रसूल को भेजा। तो कुरान

रसूल होना पॉसिबल नहीं था, यानी रसूल खुदा को आउट ऑफ रीच होना चाहिए, पैगंबर इस्लाम को इतना और को बिल्कुल होना चाहिए, इसका कोई इनकार नहीं, इसका कोई इनकार नहीं। लेकिन अगर पैगंबर इस्लाम को इतना आउट ऑफ रीच कर दें कि खुद पैगंबर इस्लाम रोल मॉडल होना ही छोड़ दें, तो मेरे अजीज दोस्तों, फिर पैगंबर इस्लाम का मेरे लिए रोल मॉडल होने का मतलब क्या है? अगर पैगंबर इस्लाम को रोल मॉडल होना है, तो पैगंबर को इमामत और नबुवत की मंजिल एक तरफ और इंसानियत की मंजिल एक तरफ रखना है। इस इंसान को जिसको इंसान कमालात तक पहुंचाने के लिए पैगंबर इस्लाम आए, जब पैगंबर आए और पैगंबर इस्लाम ने इन तमाम चीजों को लोगों के सामने पेश किया, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह नजात पाओगे, छोड़ दो तमाम सजदों को, फकत एक सजदा करो नजात पाओगे, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, शायर कहता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात, एक सजदा, एक उस एक सजदे को करो। ये जो पैगंबर इस्लाम लेकर आए, तो लोगों ने नहीं माना पैगंबर इस्लाम को और कहा हम नहीं मान सकते हैं आपको कि आप रसूल है, क्योंकि आप इंसान है, इंसान, हमको आप कोई सुपरनेचुरल चीजें दिखाइए। खुदा जाने कैसे कैसे मौजिज़े पैगंबर इस्लाम से तलब किए। वो शायर कहता है कि ईसा ने फकत मुर्दों को जाने दी हैं, जनाब ईसा ने फकत मुर्दों को जाने दी हैं, ईसा ने फकत मुर्दों को जाने दी हैं और बेजान को मोहम्मद ने जबाने दी हैं। उससे मौजिजा तलब कर रहे हैं, ईसा ने फकत मुर्दों को जाने दी हैं और बेजान को मोहम्मद ने जबाने दी हैं। ये वाकया मिलता है कि संग्रेजों ने हाथों पे मोहम्मद की अजाने दी हैं। पैगंबर इस्लाम से मौजिजे तलब किए, आप बताइए, ये बताइए, ये बताइए। खुदा जाने अल्लाह को तलब किया, पैगंबर इस्लाम के पास बाग को तलब किया, तमाम चीजों को तलब किया, मगर पैगंबर इस्लाम ने कोई मौजिजा नहीं दिखाया। सिर्फ एक आयत आई कुरान मजीद की, जब मौजिजों पे मौजिजे तलब किए तो खुदावंद ताला ने पैगंबर इस्लाम से कहा, कुल, इनसे कहो, सुभान रब्बी हल कुंतु इल्ला बशरर रसूला। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, पाक व पाकीज़ा मेरे रब की जात है, मैं मगर एक इंसान हूं, बशर हूं, सिवाय ये कि अल्लाह की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर मैं चाहूं तो मेरे लिए चांद का दो टुकड़े करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मैं चाहूं तो मैं दरिया, जैसे मूसा ने दरिया को दो, जैसे मूसा ने दरिया को अलग कर दिया, वैसे मैं भी कर सकता हूं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मगर यह मेरे आने का मकसद नहीं है। मेरे आने का मकसद यह है कि मैं ए इंसान तुम्हें उस कमाल तक पहुंचाऊं कि तुम अगर चाहो तो अपने हाथों से मौजिज़े दिखा सको, यह मेरा मकसद है, इस मकसद के लिए मैं आया हूं। तो आप सोचिए कि फिर उम्मत मुस्लिमा को कैसा होना चाहिए, फिर आप सोचिए कि उम्मत मुस्लिमा को कैसा होना चाहिए जो रसूल इंसान को कमालात तक लेने पहुंचाने के लिए आया था, उस रसूल का मानने वाला रसूल के नाम पर मुसलमान इतना कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज्ड। ताज्जुब होता है, कहना पड़ता है मिंबर से, मगर कहूंगा, पैगंबर 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए या 17 को, यह भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा मुसलमानों, ये भी तय नहीं हो रहा है मुसलमानों के अंदर कि रसूल 12 को पैदा हुए या 17 को। आज तक 1400 साल गुजर गए, अभी तक ये भी नहीं सोच पाए, अभी तक यहां भी इत्तेफाक नहीं हुआ कि रसूल 12 को पैदा हुए या। इतने फिरके मुसलमानों के अंदर उसी एक रसूल के। अल्लामा इकबाल कहते हैं, मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। अल्लामा इकबाल कहते हैं, मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक।

कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। उस रसूल की उम्मत को, जो रसूल सब कुछ छोड़ के इंसान को कमाल तक पहुंचाने आया था, उस इंसान का कमाल कहां पहुंचा कि खुद रसूल की विलादत तक के ऊपर इत्तेफाक नहीं कर पाया। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। यहां नहीं खत्म होता शेर। फिर कहते हैं फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। इसी उम्मत मुस्लिमा के अंदर फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? नहीं, यहां शेर खत्म नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, मुसलमान के कैरेक्टर को, मुसलमान की स्टेटस को बयान करते हैं अल्लामा इकबाल। कहते हैं यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, होता है ना फख्र होता है मैं सैयद हूं। अफगानी कहता है मैं अफगानी हूं, पाकिस्तानी कहता है मैं पाकिस्तानी हूं, इंडियन कहता है मैं इंडियन हूं, हर आदमी खोजा कहता है मैं खोजा हूं, ये कहता है मैं हर आदमी। यूं तो सैयद भी हो, सैयद हूं मैं, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो? इसलिए रसूल खुदा ने अपनी पूरी मशक्कतें दुनिया के अंदर पैगंबर इस्लाम लेकर आए ताकि मैं फख्र करूं कि मैं सैयद हूं, ताकि मैं फख्र करूं कि मैं अफगान हूं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो? जिसलिए पैगंबर इस्लाम आए, जिसलिए कुरान मजीद आया, जिस तालीम के लिए पैगंबर इस्लाम ने इंसान को कमाल तक पहुंचाने की कोशिश की, वो इंसान इतना गिर गया कि रसूल के नाम पे ज़बह करता है और कहता है कि रसूल का दीन है। कैसा इस्लाम? नाम रसूल का, नाम शरीयत का, कुरान मजीद के साथ जस्टिफिकेशन करके, हर हीनस क्राइम, हर बुराई करके उसको जस्टिफाई करता है कुरान के साथ। ये रसूल इस्लाम लेकर आए थे। ये है उम्मत मुस्लिमा। जब विलादत हो, जब वफात हो पैगंबर इस्लाम की, तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सी चीज सीखना चाहिए? वो कौन सी चीज थी? जौक दर जौक लोगों ने अपने मजहब को, अपनी तमाम चीजों को छोड़ के रसूल के कदमों को चूमा, वो क्या था? पैगंबर का नोबल कैरेक्टर, पैगंबर का किरदार था, पैगंबर का बात करने का अंदाज था। मुबाहला में जब नजरान, क्रिश्चियंस ऑफ नजरान मुबाहला में जब पैगंबर इस्लाम के सामने आए, तो पैगंबर इस्लाम ने मुबाहला किया, चाहा कि मुबाहला हो, मगर जब नजरान के मसीही और ईसाइयों ने कहा कि हम नहीं करेंगे मुबाहला, तो पैगंबर इस्लाम ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? क्या बर्ताव था पैगंबर इस्लाम का? अभी बच्चे ने आपके सामने पढ़ा कि एक औरत थी जो पैगंबर इस्लाम को कूड़ा फेंकती थी। हर मर्तबा जब पैगंबर इस्लाम गुजरते थे तो पैगंबर के सर पे कूड़ा फेंकती थी। क्या बर्ताव किया पैगंबर ने उस औरत के साथ? कौन सी चीज थी जो उस औरत को पैगंबर इस्लाम के कदमों तक पहुंचा चुकी थी? यह पैगंबर का किरदार था। कहते हैं एक मर्तबा पैगंबर नहीं चाहते थे किसी का दिल दुखे। ये पैगंबर पैगंबर कभी भी नहीं चाहते थे कि किसी का दिल दुखे, किसी के दिल में कोई दर्द हो। कभी भी पैगंबर इस्लाम ने यह नहीं चाहा। लेकिन आज जब मुसलमान को इंसान देखता है और मुसलमान के किरदार को इंसान देखता है, तो ताज्जुब होता है कि यह रसूल का मानने वाला है। एक मर्तबा सुना होगा आपने वाकया, एक मर्तबा पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में एक आदमी आया, एक फल लेकर आया, और पैगंबर इस्लाम की बारगाह में पहुंचा और पैगंबर से फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं इस फल को आपके लिए, बिलखुसूस आपके लिए लेकर आया हूँ या रसूल अल्लाह। पैगंबर इस्लाम ने वो फल देखा, उस इंसान के अकीदे को देखा, उस इंसान के खुलूस को देखा, और पैगंबर इस्लाम ने वो फल कबूल कर लिया। ये इंसान बैठा हुआ है पैगंबर इस्लाम के सामने।

फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बाहर, सीने पे सुलाएगी तुम्हें रात को मादर। ये रुखसती कैसी थी हुसैन के लिए? बस अजादारा इमाम हुसैन पैगंबर इस्लाम अपने हुजरे में है, एक मरतबा जनाब सैयदा से कह चुके कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया, मैं इलर रफीक आला, मैं अपने आला रफीक की तरफ जाने वाला हूँ। आजादारा ने इमाम हुसैन, एक मरतबा जनाब सैयदा ने जब ये जुमला सुना है कि रफीक आला की तरफ जा रहे हैं, पैगंबर इस्लाम इस दुनिया से उठने वाले हैं, बस आजादारा ने इमाम हुसैन, इमाम हसन और इमाम हुसैन और मौलाए कायनात हुजरे में आए। दोनों इमाम हसन और इमाम हुसैन रसूल के सीने के ऊपर सवार हुए। एक मरतबा मौलाए कायनात ने कहा हसनैन से हटा, हसनैन को हटा दो। पैगंबर ने कहा नहीं, इन्हें मेरे बदन को सूंघने दो, मैं चाहता हूं कि मैं इनके बदन को सूंघूं, मैं चाहता हूं कि ये मेरी बदन को सूंघे ताकि ये दुनिया में रसूल की खुशबू को याद रखें, मैं हसन हुसैन की खुशबू के साथ दुनिया से उठना चाहता हूं। उसके बाद मौलाए कायनात ने हसन हुसैन को दूर किया। आजादारा ने इमाम हुसैन, एक मरतबा जनाब जहरा बैठी हुई है, मौलाए कायनात जनाब जहरा के साथ हैं। 3 दिन के बाद कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम को थोड़ी देर कुछ आराम मिला। पैगंबर इस्लाम को जब आराम मिला है, थोड़ी सी नींद करने लगे। इतने में जनाब सैयदा कहती हैं, जनाब सैयदा इतने में कहते हैं कि एक मरतबा एक दक्कुल बाब की आवाज़ आई। जनाब सैयदा का दिल तड़प गया। दक्कुल बाब की आवाज़ आई, बाबा अभी सोए हैं। जनाब सैयदा ने खामोशी से पूछा कौन है? फरमाया मैं गरीब हूँ, रसूल से मुलाकात करना चाहता हूँ, मैं गरीब हूँ, रसूल से मुलाकात करना चाहता हूँ। जनाब सैयदा ने कहा बाबा अभी सोए हैं, बाबा अभी सोए हैं, थोड़ी देर के बाद, कुछ देर के बाद फिर कभी मुलाकात कर लेना। फिर थोड़ी देर खामोशी रही, कुछ देर के बाद फिर दक्कुल बाब की आवाज़ आई, फिर जनाब सैयदा का दिल तड़प गया, फिर पूछा कौन है? फरमाया मैं गरीब हूँ, रसूल से मुलाकात करना चाहता हूँ। फरमाया रसूल आराम फरमा रहे हैं, फिर मुलाकात कर लेना। जब तीसरी मर्तबा आवाज़ आई तो जनाब सैयदा की आंखों से आंसू बहने लगे। एक आंसू का कतरा पैगंबर इस्लाम के रुखसार पे पड़ा। पैगंबर इस्लाम को एक मर्तबा नींद से पैगंबर इस्लाम उठे और फरमाया जहरा क्या बात है? फरमाया बाबा न जाने कौन है एक गमनाक आवाज़ से कहता है कि मैं आया हूँ, गरीब हूँ, बाबा से मुलाकात करना चाहता हूँ। पैगंबर इस्लाम ने जहरा से कहा बेटी जहरा, बेटी सैयदा ये वो है जो किसी की इजाजत नहीं लेता, बेटी ये तुम्हारे घर का शरफ है कि मलकुल मौत तुम्हारे घर की इजाजत लेकर आ रहा है, ये वो है जो बच्चों बीवियों को बेवा कर देता है, जो बच्चों को यतीम करता है, ये तुम्हारे घर का शरफ है सैयदा, इसे आने दो। अजादारो ये वो घर है कि जहां फरिश्ता भी बगैर इजाजत के नहीं आता, हाय रसूल के बाद इसी दरवाजे पे आग लगाई गई, हाय रसूल के बाद इसी दरवाजे पे आग लगाई गई, इसी दरवाजे को गिराया गया, इसी बेटी की पसलियों को तोड़ दिया गया। हजादारों एक मरतबा जनाब सैयदा बैठी हुए, जब पैगंबर इस्लाम इस दुनिया से उठ गए, जब पैगंबर इस्लाम इस दुनिया से उठ गए, कहते हैं कि जनाब सैयदा जाया करती थी, जनाब सैयदा जाया करती थी, बाबा की कब्र पे बैठा करती थी, अपने हाथ को कब्र पे रखा करती थी और कहा करती थी बाबा बाबा सुब्बता अलैया मसाइब, बाबा सुब्बतालैया मसाइबुन लौ अन्ना सुब्बतालैया मिसरन लयालिया, बाबा आपके बाद फातिमा पे ऐसी मुसीबतें पड़ी, बाबा ऐसी मुसीबतें अगर दिन पे पड़ती तो दिन रात में तब्दील हो जाते। कभी बाबा की कब्र पे बैठ के गिरिया किया करती थी और कहा करती थी बाबा बाबा बाबा लस्तु अबकी लिमा युसना बे, कहा करती थी बाबा बाबा फातिमा इसलिए नहीं गिरिया करती कि फातिमा के साथ ये बर्ताव हुआ, क्या बर्ताव? कि फातिमा की पसलियों को तोड़ दिया गया, कि फातिमा के मोहसिन को शहीद कर दिया गया।

प्यार के जरिए किया। कौन सी चीज है जिसने पैगंबर इस्लाम की एक एक बात को इतना एट्रैक्टिव बनाया, इतना एट्रैक्टिव कि लोगों ने अपने मजहब छोड़ के पैगंबर इस्लाम के कदमों को चूमना शुरू कर दिया? क्या था, कौन सी चीज थी? ये पैगंबर इस्लाम का किरदार का कमाल था। लोगों ने पैगंबर इस्लाम से मौजीज़े तलब किए। मैं आप ये आयतें पढ़ना मकसद नहीं है, मगर पैगंबर इस्लाम से मौजीज़े तलब किए क्योंकि लोगों की जो मेंटालिटी थी वो मेंटालिटी ये चाहती थी, वो ये समझती थी कि पैगंबर इस्लाम जैसी शख्सियत को बहुत बुलंद होना चाहिए। कैसे? कि इंसानियत जिसको पहुंच ना सके। कुरान की आयत में सूरह बनी इस्राइल में खुदावंद तआला इरशाद फरमाता है, सुनिएगा इस आयत को जरा गौर से, वमा मना अन्नास अन युमिनू इज जाअहुमुल हुदा। वो कौन सी चीज थी जिस चीज ने इंसानों को ईमान लाने से रोका? कौन सी चीज थी? जबकि हिदायत आ चुकी थी। खुदा कहता है वमा मना अन्नास अन युमिनू इज जाअहुमुल हुदा। वो कौन सी चीज थी जिसने इंसानों को ईमान लाने से रोका जबकि हिदायत आ चुकी थी? आप जानते हैं कौन सी चीज थी? इल्ला अन कालू, सिवाय एक चीज थी। इन्होंने क्या कहा? अबअफल्लाहु बशर रसूला, क्या खुदावंद ताला ने एक बशर को रसूल बनाकर भेजा है? यानी लोगों के लिए एक बशर का रसूल होना पॉसिबल नहीं था, यानी रसूल खुदा को आउट ऑफ रीच होना चाहिए। पैगंबर इस्लाम को इतना और वो बिल्कुल होना चाहिए, इसका कोई इनकार नहीं, इसका कोई इनकार नहीं, लेकिन अगर पैगंबर इस्लाम को इतना आउट ऑफ रीच कर दें कि खुद पैगंबर इस्लाम रोल मॉडल होना ही छोड़ दें, तो मेरे अजीज दोस्तों फिर पैगंबर इस्लाम का मेरे लिए रोल मॉडल होने का मतलब क्या है? अगर पैगंबर इस्लाम को रोल मॉडल होना है तो पैगंबर को इमामत और नबुवत की मंजिल एक तरफ और इंसानियत की मंजिल एक तरफ रखना है। इस इंसान को जिसको इंसान कमालात तक पहुंचाने के लिए पैगंबर इस्लाम आए, जब पैगंबर आए और पैगंबर इस्लाम ने इन तमाम चीजों को लोगों के सामने पेश किया, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह नजात पाओगे, छोड़ दो तमाम सजदों को, फकत एक सजदा करो नजात पाओगे, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, शायर कहता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। एक सजदा, एक उस एक सजदे को करो। ये जो पैगंबर इस्लाम लेकर आए तो लोगों ने नहीं माना पैगंबर इस्लाम को और कहा हम नहीं मान सकते हैं आपको कि आप रसूल है, क्योंकि आप इंसान है। इंसान हमको आप कोई सुपर नेचुरल चीजें दिखाइए। खुदा जाने कैसे कैसे मोजिजे पैगंबर इस्लाम से तलब किए। शायर कहता है कि ईसा ने फकत मुर्दों को जाने दी हैं, जनाब ईसा ने फकत मुर्दों को जाने दी हैं, ईसा ने फकत मुर्दों को जाने दी हैं और बेजान को मोहम्मद ने जबाने दी हैं। उससे मोजिजा तलब कर रहे हैं। ईसा ने फकत मुर्दों को जाने दी हैं और बेजा को मोहम्मद ने जबाने दी हैं। ये वाकया मिलता है कि संग्रेजों ने हाथों पे मोहम्मद की अजाने दी हैं। पैगंबर इस्लाम से मोजिजे तलब किए। आप बताइए, ये बताइए, ये बताइए। खुदा जाने अल्लाह को तलब किया, पैगंबर इस्लाम के पास बाग को तलब किया, तमाम चीजों को तलब किया, मगर पैगंबर इस्लाम ने कोई मोजिजा नहीं दिखाया। सिर्फ एक आयत आई कुरान मजीद की, जब मोजिजों पे मोजिजे तलब किए तो खुदावंद ताला ने पैगंबर इस्लाम से कहा, कुल इनसे कहो, सुभान रब्बी हल कुंतु इल्ला बशरर रसूला। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, पाक व पाकीज़ा मेरे रब की जात है, मैं मगर एक इंसान हूं, बशर हूं, सिवाय ये कि अल्लाह की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर मैं चाहूं तो मेरे लिए चांद का दो टुकड़े करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मैं चाहूं तो मैं दरिया, जैसे मूसा ने दरिया को दो, जैसे मूसा ने दरिया को अलग कर दिया, वैसे मैं भी कर सकता हूं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ये मेरे आने का मकसद नहीं है। मेरे आने का मकसद ये है कि मैं ए इंसान तुम्हें उस कमाल तक पहुंचाऊं कि तुम अगर चाहो तो अपने हाथों से मौजूदे दिखा सको।

मेरा मकसद है, इस मकसद के लिए मैं आया हूं। तो आप सोचिए कि फिर उम्मत मुस्लिमा को कैसा होना चाहिए, फिर आप सोचिए कि उम्मत मुस्लिमा को कैसा होना चाहिए जो रसूल इंसान को कमालात तक लेने पहुंचाने के लिए आया था, उस रसूल का मानने वाला रसूल के नाम पर मुसलमान इतना कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज्ड। ताज्जुब होता है, कहना पड़ता है मिंबर से, मगर कहूंगा, पैगंबर 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए या 17 को, यह भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा मुसलमानों में, यह भी तय नहीं हो रहा है मुसलमानों के अंदर कि रसूल 12 को पैदा हुए या 17 को। आज तक 1400 साल गुजर गए, अभी तक यह भी नहीं सोच पाए, अभी तक यहां भी इत्तेफाक नहीं हुआ कि रसूल 12 को पैदा हुए या। इतने फिरके मुसलमानों के अंदर उसी एक रसूल के। अल्लामा इकबाल कहते हैं, मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। अल्लामा इकबाल कहते हैं, मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हराम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। उस रसूल की उम्मत को, जो रसूल सब कुछ छोड़ के इंसान को कमाल तक पहुंचाने आया था, उस इंसान का कमाल कहां पहुंचा कि खुद रसूल की विलादत तक के ऊपर इत्तेफाक नहीं कर पाया। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। यहां नहीं खत्म होता शेर, फिर कहते हैं, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। इसी उम्मत मुस्लिमा के अंदर फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। नहीं, यहां शेर खत्म नहीं होता, आगे बढ़ते हैं, मुसलमान के कैरेक्टर को, मुसलमान की स्टेटस को बयान करते हैं अल्लामा इकबाल। कहते हैं, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, होता है ना फख्र, होता है मैं सैयद हूं, अफगानी कहता है मैं अफगानी हूं, पाकिस्तानी कहता है मैं पाकिस्तानी हूं, इंडियन कहता है मैं इंडियन हूं, हर आदमी, खोजा कहता है मैं खोजा हूं, ये कहता है मैं, हर आदमी, यूं तो सैयद भी हो, सैयद हूं मैं, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। इसलिए रसूल खुदा ने अपनी पूरी मशक्कतें दुनिया के अंदर पैगंबर इस्लाम लेकर आए, ताकि मैं फख्र करूं कि मैं सैयद हूं, ताकि मैं फख्र करूं कि मैं अफगान हूं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। जिसलिए पैगंबर इस्लाम आए, जिसलिए कुरान मजीद आया, जिस तालीम के लिए पैगंबर इस्लाम ने इंसान को कमाल तक पहुंचाने की कोशिश की, वह इंसान इतना गिर गया कि रसूल के नाम पे जबा करता है और कहता है कि रसूल का दीन है। कैसा इस्लाम, नाम रसूल का, नाम शरीयत का, कुरान मजीद के साथ जस्टिफिकेशन करके, हर हीनस क्राइम, हर बुराई करके उसको जस्टिफाई करता है कुरान के साथ। ये रसूल इस्लाम लेकर आए थे, ये है उम्मत मुस्लिमा। जब विलादत हो, जब वफात हो पैगंबर इस्लाम की, तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सी चीज सीखना चाहिए, वो कौन सी चीज थी। जौक दर जौक लोगों ने अपने मजहब को, अपनी तमाम चीजों को छोड़ के रसूल के कदमों को चूमा, वो क्या था, पैगंबर का नोबल कैरेक्टर, पैगंबर का किरदार था, पैगंबर का बात करने का अंदाज था। मुबाहला में जब नजरान, क्रिश्चियंस ऑफ नजरान मुबाहला में जब पैगंबर इस्लाम के सामने आए, तो पैगंबर इस्लाम ने मुबाहला किया, चाहा कि मुबाहला हो, मगर जब

नजरान के मसीही और ईसाइयों ने कहा कि हम नहीं करेंगे वो वाहेला, तो पैगंबर इस्लाम ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? क्या बर्ताव था पैगंबर इस्लाम का? अभी बच्चे ने आपके सामने पढ़ा कि एक औरत थी जो पैगंबर इस्लाम को कूड़ा फेंकती थी। हर मर्तबा जब पैगंबर इस्लाम गुजरते थे तो पैगंबर के सर पे कूड़ा फेंकती थी। क्या बर्ताव किया पैगंबर ने उस औरत के साथ? कौन सी चीज थी जो उस औरत को पैगंबर इस्लाम के कदमों तक पहुंचा चुकी थी? ये पैगंबर का किरदार था। कहते हैं एक मर्तबा पैगंबर नहीं चाहते थे किसी का दिल दुखे। ये पैगंबर है, पैगंबर कभी भी नहीं चाहते थे कि किसी का दिल दुखे, किसी के दिल में कोई दर्द हो। कभी भी पैगंबर इस्लाम ने ये नहीं चाहा। लेकिन आज जब मुसलमान को इंसान देखता है और मुसलमान के किरदार को इंसान देखता है तो ताज्जुब होता है कि ये रसूल का मानने वाला है। एक मर्तबा सुना होगा आपने वाकया, एक मर्तबा पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में एक आदमी आया, एक फल लेकर आया और पैगंबर इस्लाम की बारगाह में पहुंचा और पैगंबर से फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं इस फल को आपके लिए, बिलखुसूस आपके लिए लेकर आया हूँ या रसूल अल्लाह। पैगंबर इस्लाम ने वो फल देखा, उस इंसान के अकीदे को देखा, उस इंसान के खुलूस को देखा और पैगंबर इस्लाम ने वो फल कबूल कर लिया। ये इंसान बैठा हुआ है पैगंबर इस्लाम के सामने, चाहता है कि पैगंबर उस फल को खाएं। पैगंबर ने चाकू ली, फल को काटा, एक स्लाइस काटा और अपने मुंह में रखा, दूसरा स्लाइस काटा, फिर अपने मुंह पे रखा, खाया, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह करते करते पैगंबर इस्लाम सारे का सारा फल खा गए। ये इंसान के दिल में इतनी खुशी महसूस हुई कि मैं जो फल पैगंबर के लिए लेकर आया था वो फल पैगंबर ने खा लिया। खड़ा होकर चला गया। अब लोग छोड़ेंगे थोड़ी पैगंबर को। अस्हाब बैठे हुए थे, या रसूल अल्लाह, आपके किरदार के खिलाफ बात हुई। क्या किरदार के खिलाफ बात हुई? या रसूल अल्लाह, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके सामने कोई शय आई हो और आपने हमारे साथ उसको तनावुल ना किया। या रसूल अल्लाह, ये पहली मर्तबा हुआ कि एक फल आया, आपने पूरे फल को खा लिया और एक टुकड़ा भी हमको नहीं दिया। पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा, तुम जानते हो ये फल कितना कड़वा था? इतना कड़वा फल था कि अगर मैं तुम्हें देता और तुम इस फल को चखते और मुंह बनाते, तुम उसके दिल को दुखाते। अल्लाह हू अकबर। तुम उसके दिल को दुखा। वो रसूल जो इंसान को कमालात तक पहुंचाने के लिए आया था, उस रसूल का मानने वाला, रसूल के नाम पे लोगों के दिल को दुखाना तो दूर की बात है, कत्ल करता है रसूल के नाम पे। अगर आप मुसलमान न होते आज, कितने रिएक्टिव हैं मुस्लिम्स, जरा सोचिए आप। अगर आज आप मुसलमान न होते और आपके सामने मैं रसूल को उस अंदाज से पेश करता जिस अंदाज से आज मुसलमान रसूल को पेश करता है, तो आपके दिल में ये मुसलमान होने की रग़बत होती? आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए। जिस तरह आज इस्लामोफोबिया के अंदर इस्लाम को फैलाया जा रहा है और पैगंबर इस्लाम के किरदार को बिल्कुल नेगेटिवली पेश किया जा रहा है, अगर आप मुसलमान ना होते तो आपके दिल में मुसलमान होने की रग़बत होती? क्यों? इसलिए कि रसूल के एम्बेसडर होने की हैसियत से हमने रसूल के उस नोबल कैरेक्टर को कायनात के सामने पेश नहीं किया। यह हमारी कोताही है, मगर हमारी जिम्मेदारियों में से अहम जिम्मेदारी यह है कि हम पैगंबर इस्लाम के किरदार को कायनात के सामने यूं पेश करें जैसे हो, ताकि हर देखने वाला कहे कि नहीं, अगर यह है तो मोहम्मद का मानने वाला। तब जाके पैगंबर इस्लाम के किरदार को दुनिया के सामने पेश करने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। मेरे अजीज दोस्तों, ये रसूल जो किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहता था, उसी रसूल की बेटी के दिल को कितना दुखाया मुसलमानों ने, कितने अरसे के बाद, कितने अरसे के बाद।

क्या रसूल था, खुदा की कसम, कहते हैं वाकया आपका सुना हुआ है। कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम के आखिरी अय्याम में पैगंबर हुजरे के अंदर थे, ज़ौफ़ का ये आलम था, कमजोरी का ये आलम था कि पैगंबर इस्लाम सिवाय नमाज के बिस्तर से बाहर नहीं निकलते थे, हुजरे के बाहर नहीं निकलते थे पैगंबर। कहते हैं कि आखिरी अय्याम 3 दिन बाकी थे पैगंबर की वफात को। तारीख में मिलता है कि पैगंबर इस्लाम को मौलाए कायनात के सहारे पैगंबर इस्लाम अपने हुजरे के बाहर आए, मस्जिद नबवी के अंदर आए पैगंबर। जो जा चुके हैं मदीना, खुदा उन्हें बार बार ले जाए, जो नहीं गए हैं खुदा उन्हें ताला उन्हें तौफीक इनायत फरमाए और नसीब करे कि मदीने मुनव्वरा को जाकर देखें। पैगंबर जहां दफन है वो पैगंबर का हुजरा था, और जो मिंबर है उसका फासला आप जानते हैं, जहां पैगंबर का मिंबर है बस उस फासले को बहुत देर लगी पैगंबर को तय करने के लिए, इतनी कमजोरी आ चुकी थी। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे पैगंबर। एक मरतबा मिंबर के ऊपर तशरीफ फरमा थे और पैगंबर इस्लाम ने कहा, मेरे अय्याम के आखिरी दिन आ गए और मैं इस दुनिया से अनकरीब जाने वाला हूं, अगर किसी का हक मेरी गर्दन पे है तो मोहम्मद ऐलान कर रहा है कि आज मांगने वाला अपने हक को मांग ले। पैगंबर की रहलत का तज़किरा सुनकर, यानी पैगंबर की रहलत की खबर सुनकर कि पैगंबर अब रहलत करने वाले हैं, मस्जिद नबवी के अंदर रोने का कोहराम बरपा हो गया। असहाब रोने लगे। पैगंबर ने दूसरी मरतबा कहा, अगर किसी का हक मेरी गर्दन पे रहता है तो आज वो अपने हक को मांग ले। तीसरी मरतबा पैगंबर ने जब आवाज दी तो एक आदमी खड़ा हुआ, कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा एक हक है जिसको आपको अदा करना है। पैगंबर इस्लाम ने कहा, कौन सा हक? फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपको याद है उस मौके के ऊपर जब माल गनीमत जमा हुआ था और बहुत से मुसलमान उस माल गनीमत को देखने आए थे और आप लोगों को हटाना चाहते थे, आपके हाथ में एक कोड़ा था, या रसूल अल्लाह, उस कोड़े से आप लोगों को हटा रहे थे और वो आपका कोड़ा मेरे मेरी कमर को छू गया। या रसूल्लाह, मैं चाहता हूं कि मैं भी उस कोड़े को आपकी गर्दन पे छुआऊं। ये सुना है वाकया आपने, मैं फकत पैगंबर इस्लाम के किरदार को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। पैगंबर इस्लाम ने इमाम हसन और हुसैन को बुलाया, बेटा हसन, बेटा हुसैन, जाओ मेरे हुजरे से कोड़ा लेकर आओ। मोहम्मद ये नहीं मान सकता कि किसी का हक हो और मोहम्मद उस हक को अदा ना करे। एक मरतबा इमाम हसन और हुसैन आए, हुजरे के अंदर आए, सैयदा से कोड़ा लिया, कोड़ा लेकर एक मरतबा मस्जिद नबवी के अंदर आए और पैगंबर के हाथों में दिया। पैगंबर इस्लाम ने उस कोड़े को उस इंसान के हाथ में दिया और कहा कि तुम अपने हक को अदा कर लो। फरमाया, या रसूलल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता, जब आपका कोड़ा मुझे लगा था उस वक्त मेरा नीचे का एहराम तो था लेकिन मेरे ऊपर का कपड़ा नहीं था, मेरी चमड़ी से लगा था। पैगंबर इस्लाम ने अपनी कमीज को ऊंचा किया, मोहरे नबूवत नजर आया। एक मरतबा वो इंसान आगे बढ़ा, कोड़े को जमीन पे फेंका और मोहरे नबूवत के बोसे देना शुरू किए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरी मजाल है कि मैं आपके बदन को कोड़ा लगाऊं? या रसूल अल्लाह, ऐसा हो सकता है? ये तमाम जब वाकया हो गया, कहते हैं कि रसूल दोबारा हुजरे में आए, जब हुजरे में आए तो सैयदा को तड़पते हुए देखा। फरमाया, बेटी सैयदा, क्या बात है? फरमाया, बाबा, अभी हसन और हुसैन आए थे, मेरे हाथों से कोड़ा लेकर गए। या रसूल अल्लाह, आपको क्या हुआ? पैगंबर ने वाकया बयान किया, वाकया बयान हो गया। उसके बाद जनाब सैयदा के कानों में पैगंबर ने कुछ कहा, जनाब सैयदा गिरिया करने लगी। उसके बाद जनाब पैगंबर इस्लाम ने जनाब सैयदा के कानों में कुछ और कहा, जनाब सैयदा मुस्कुराने लगी। बाद में जब लोगों ने पूछा, जहरा से पूछा, क्या
پیغمبر نے فرمایا تھا کہا پہلی مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اب میرے دن

खत्म हो गए, मैं इस दुनिया से उठने वाला हूं, तो मैंने गिरिया किया। उसके बाद पैगंबर इस्लाम ने मुझसे कहा, मगर खुशखबरी यह है कि तुम अनकरीब मुझसे मिलने वाली हो। कहा, मैं मुस्कुराई। अजादारों, बाप और बेटी का एक खास रिश्ता होता है, बाप और बेटी का एक खास रिश्ता होता है। आप जानते हैं, जनाब खदीजा के बाद जनाब सैयदा, जब पैगंबर इस्लाम मक्के की धूप से थक के आते थे, तो जनाब सैयदा अपने हाथों को फैला दिया करती थी, बाबा अपने सर को मेरे सीने के ऊपर रख दीजिए। इसीलिए

तकिए की धूप से थक के आते थे तो जनाब सैयदा अपने हाथों को फैला दिया करती थी, बाबा अपने सर को मेरे सीने के ऊपर रख दीजिए। इसीलिए पैगंबर इस्लाम ने जनाब सैयदा को उम्मे अबीहा का नाम दिया। ये फातिमा अपने बाबा की माँ है, अपने बाप की माँ है। रसूल आके सैयदा के सीने पे सर रखा करते थे, रसूल को सुकून मिल जाता था। अरबाब मकातिल लिखते हैं, जब हुसैन करबला में रुखसत हो रहे थे, जब तमाम लोगों से रुखसत हो चुके, सकीना से भी रुखसत हो गए, उसके बाद पैगंबर इस्लाम का ये नवासा घोड़े पे जुलजना पे सवार हुआ। जब जुलजना पे सवार हुआ तो एक मरतबा जनाब हुसैन ने जुलजना से कहा, ये आखिरी सवारी है, इसके बाद तुम पर कोई सवार ना होगा। तो जुलजना ने बेजबानी जबान में एक मरतबा जमीन की तरफ देखा। जब हुसैन ने जमीन पे देखा तो जमीन क्या देखा, देखा कि 4 साल बच्ची घोड़े की सुमो से लिपटी हुई कह रही है, जुलजना मेरे बाबा को न ले जा। हुसैन घोड़े से जमीन पे तशरीफ लाए, सकीना को सीने से लगाया, नींद आएगी जब आपकी पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैलानिया बाहर, सीने पे सुलाएगी तुम्हें रात को मादर। ये रुखसती कैसी थी हुसैन के लिए। बस आजादारा इमाम हुसैन पैगंबर इस्लाम अपने हुजरे में है, एक मरतबा जनाब सैयदा से कह चुके कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया, मैं इलर रफीक आला, मैं अपने आला रफीक की तरफ जाने वाला हूँ। आजादारा ने इमाम हुसैन एक मरतबा जनाब सैयदा ने जब ये जुमला सुना है कि रफीक आला की तरफ जा रहे हैं, पैगंबर इस्लाम इस दुनिया से उठने वाले हैं, बस आजादारा ने इमाम हुसैन, इमाम हसन और इमाम हुसैन और मौलाए कायनात हुजरे में आए। दोनों इमाम हसन और इमाम हुसैन रसूल के सीने के ऊपर सवार हुए। एक मरतबा मौलाए कायनात ने कहा, हसनैन से हटा, हसनैन को हटा दो। पैगंबर ने कहा, नहीं, इन्हें मेरे बदन को सूंघने दो, मैं चाहता हूं कि मैं इनके बदन को सूंघूं, मैं चाहता हूं कि ये मेरी बदन को सूंघें ताकि ये दुनिया में रसूल की खुशबू को याद रखें, मैं हसन और हुसैन की खुशबू के साथ दुनिया से उठना चाहता हूं। उसके बाद मौलाए कायनात ने हसन और हुसैन को दूर किया। आजादारा ने इमाम हुसैन एक मरतबा जनाब जहरा बैठी हुई है, मौलाए कायनात जनाब जहरा के साथ हैं। 3 दिन के बाद कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम को थोड़ी देर कुछ आराम मिला। पैगंबर इस्लाम को जब आराम मिला है, थोड़ी सी नींद करने लगे, इतने में जनाब सैयदा कहती हैं, जनाब सैयदा इतने में कहते हैं कि एक मरतबा एक दक्कुल बाब की आवाज़ आई। जनाब सैयदा का दिल तड़प गया, दक्कुल बाब की आवाज़ आई, बाबा अभी सोए हैं। जनाब सैयदा ने खामोशी से पूछा, कौन है? फरमाया, मैं गरीब हूँ, रसूल से मुलाकात करना चाहता हूँ, मैं गरीब हूँ, रसूल से मुलाकात करना चाहता हूँ। जनाब सैयदा ने कहा, बाबा अभी सोए हैं, कुछ देर के बाद फिर कभी मुलाकात कर लेना। फिर थोड़ी देर खामोशी रही, कुछ देर के बाद फिर दक्कुल बाब की आवाज़ आई, फिर जनाब सैयदा का दिल तड़प गया, फिर पूछा, कौन है? फरमाया, मैं गरीब हूँ, रसूल से मुलाकात करना चाहता हूँ। फरमाया, रसूल आराम फरमा रहे हैं, फिर मुलाकात कर लेना। जब तीसरी मर्तबा आवाज़ आई तो जनाब सैयदा की आंखों से आंसू बहने लगे। एक आंसू का कतरा पैगंबर इस्लाम के रुखसार पे पड़ा। पैगंबर इस्लाम को एक मर्तबा नींद से पैगंबर इस्लाम उठे और फरमाया, जहरा क्या बात है? फरमाया, बाबा न जाने कौन है एक गमनाक आवाज़ से कहता है कि मैं आया हूँ, गरीब हूँ, बाबा से मुलाकात करना चाहता हूँ। पैगंबर इस्लाम ने जहरा से कहा, बेटी जहरा, बेटी सैयदा, ये वो है जो किसी की इजाजत नहीं लेता। बेटी, ये तुम्हारे घर का शरफ है कि मलकुल मौत तुम्हारे घर की इजाजत लेकर आ रहा है। ये वो है जो बच्चों बीवियों को बेवा कर देता है, जो बच्चों को यतीम करता है, ये तुम्हारे घर का शरफ है सैयदा, इसे आने दो। आजादारो, ये वो घर है

लाडली चलो गए चले यहाँ से चले चलो करबला मिलेंगे तुम्हें चचा जा तेरे यहाँ से।

0: गए, औलाद इस दुनिया से चले गई, माल छिन गया, बीमारी आपके बदन में आ गई, आपकी जौजा ने कहा या नबी अल्लाह, अल्लाह से दुआ कीजिएगा, अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद करेगा। हज़रत अय्यूब ने कहा शर्म आती है मुझे, अल्लाह की बारगाह में शिकवा करूँ, 80 साल मैंने नेमतें इस्तेमाल की, अल्लाह की बारगाह में मैंने कुछ नहीं कहा। अभी तो 8 साल ही हुए हैं बलाएं नाजिल हुए हैं, अभी इम्तिहान की तो 8 ही साल हुए, वो तो 80 साल नेमतें लेता रहा, लेकिन अभी तो बलाओं का इम्तिहान के 8 साल हैं। जब इम्तिहान और नेमतों बराबर हो जाए, वो 80 साल हो जाए, तब अल्लाह की बारगाह में शिकवा करेंगे। 80 साल नेमतों से फ़ायदा उठाते रहे, कैसे कहूँ दुआ करूँ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में? शर्म आती है, परेशानी हद से बड़ी, लोगों ने आपको शहर से निकाल दिया, तब आपकी बीवी ने आप तो दुआ कर लो। अदब देखिएगा हज़रत अय्यूब का। हम क्या कहते हैं, जब भी कोई मुसीबत आती है, अल्लाह ने हमारे साथ ऐसा किया, अल्लाह ने हमारे साथ ऐसा किया। हज़रत अय्यूब ने तरीक़ा सिखाया, अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंता अरहमुर राहिमीन। तवज्जो कीजिएगा, हज़रत अय्यूब ने कहा परवरदिगार मुश्किलात मुझ तक पहुँच चुकी हैं, तू रहम करने वाला है। पहुंचा तर्जुमा नहीं पहुंचा, मुश्किलात ने मुझे घेर लिया है, तू रहम करने वाला है। हज़रत अय्यूब ने नहीं कहा मुश्किलात तूने दी है, तू रहम करने वाला है। मुश्किलात का खिताब अल्लाह से हज़रत अय्यूब ने नहीं कहा तू मुश्किलात देने वाला, तू इम्तिहान लेने वाला है और तू रहम करने वाला, नहीं कहा मुश्किलात मुझ तक पहुँच गई हैं, अब तू रहम करने वाला है। ये अदब है अल्लाह की बारगाह में बात करने का सलीका हज़रत अय्यूब ने सिखाया। अगर ज़िंदगी में मुश्किल है तो मुश्किल को अपनी तरफ से समझो, रहमत को अल्लाह की तरफ से समझो। वो जो करता है खैर करता है, वो जो करता है अच्छा करता है। दुआ आज कबूल नहीं हो रही है तो यकीन रखो उसकी मसलहत हमारे लिए कुछ और है। बात पहुंच रही है, किसी स्कॉलर ने कहा परवरदिगार तेरी अताओं का शुक्रिया और तेरी मसलहत का और शुक्रिया। यानी क्या, तू दे तो शुक्रिया, तू ना दे तो भी शुक्रिया, और ना दे तो बहुत शुक्रिया। ये ना दे पे बहुत शुक्रिया क्यों? इसलिए कि अता में जितना हमने मांगा उतना मिल गया। अगर वो नहीं दे रहा है तो हमारे लिए उसने अलग प्लान रखा है, और वो प्लान अता से बड़ा होता है। वो मसलहत अल्लाह तबारक व ताला की उसकी अता से बड़ी होती है। तो ये तसव्वुर इंसान के जहन में रहे, अल्लाह तबारक व ताला आसानियां पैदा करने वाला। ये दूसरा फार्मूला है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, उम्मीद को डेवलप करने के लिए एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल ये, फ़इन्ना मअल उस्रे युस्रा, यकीन रखो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे लिए एक मुश्किल के मुकाबले में कई आसानियाँ पैदा कर देगा। तीसरा फार्मूला भी बता दूँ, जो आखिरी 8वें इमाम अली उन रिदा अलैहिस्सलाम से मंसूब भी है। सब मिलके नारा लगाइए,
1: मोहम्मद व आलि मोहम्मद सलावात।
0: तीसरा फार्मूला जो इमाम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला के बारे में अच्छा गुमान रखो। लोगों के बारे में अच्छा गुमान होना चाहिए, आपने सुना है नहीं, अना हदीस कुदसी है, मौला 8वें इमाम नकल करते हैं पैगंबर इस्लाम से, अना इंदा जन्ने अब्दी बी, मैं वैसा ही होता हूँ जैसा मेरा बंदा मेरे बारे में सोचता है, मैं वैसा ही उसके साथ करता हूँ जैसा मेरे बारे में वो सोचता है। हमारे लिए हुक्म है कि लोगों के बारे में अच्छा सोचो, पड़ोसियों के बारे में अच्छा सोचो, रिश्तेदारों के बारे में अच्छा सोचो। हत्ता कुरान मजीद में जहाँ पर इफ्क का वाकया है, जहाँ पर एक स्लैंडरिंग का तस्करा अल्लाह तबारक व तआला ने किया है, वहाँ पर अल्लाह ने इनडायरेक्ट एक ऐसा मैसेज दिया है साहिबान ईमान के लिए, कोई भी खबर तुम्हें मिले तो उसका पहली जिम्मेदारी तुम्हारी यह है कि मोमिन के बारे में, मोमिना के बारे में पहली जिम्मेदारी है रिजेक्ट करो। गलत खबर मिले किसी मोमिन या मोमिना के बारे में, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजेक्शन है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पहले ये कहो जब तक मुकम्मल प्रूफ ना मिल जाए। कहने की इजाज़त नहीं है, अच्छा गमान करो। अगर मोमिन किसी

क्लब के बाहर खड़ा हुआ है, बार के बाहर खड़ा हुआ है, ये ना कहो कि पी गया, बल्कि अच्छा गमान करो, हो सकता है उस दुकान से कुछ और खरीद रहा हो, हो सकता है एड्रेस पूछ रहा हो, अच्छा गुमान करो। जब अच्छे गुमान का कल्चर हमारी कम्युनिटी में आ जाता है, किसी की इज्जत नीलाम नहीं होती है। ये सोशल मीडिया ने क्या किया पता है, इज्जतों को नीलाम कर दिया। पहले फॉरवर्ड करते हैं, बात पूछते हैं। आज की सोशल मीडिया हमारे मुल्कों की पुलिस की तरह है। हमारे मुल्कों की पुलिस क्या करती है, पहले मार देती है, बात पूछती है कि हमने क्यों मारा आपको। सोशल मीडिया भी ऐसे, पहले हम फॉरवर्ड कर देते हैं, बात पूछते हैं कि हमने क्यों फॉरवर्ड किया जी। ये गलत है, सोच अच्छी होनी चाहिए। अच्छा सोचो, जब तक प्रूफ ना मिल जाए, गलत तसव्वुर न किसी मोमिन के बारे में और न किसी मोमिना के बारे में। हत्ता सहाबे रसूल ने कहा, जब हज़रत अबू ज़र पीछे रह गए जंगे तबूक में, आपकी ऊँटनी ने साथ नहीं दिया, आगे नहीं बढ़ पाए, तो असहाब ने कहा या रसूलल्लाह अबू ज़र गए। हज़रत पैगंबर इस्लाम ने कहा, अगर दिल में ईमान है, इश्क है, तो वो आएगा। लेकिन असहाब ने कहा अबू ज़र गए, इंतज़ार करते हैं ना अबू ज़र के खिलाफ, सलमान के खिलाफ कोई साजिश हो जाए, अबू ज़र गए। पैगंबर इस्लाम ने कहा वो आएगा, अच्छा सोचो, वो आएगा तो आ ही जाएगा। थोड़ी देर के बाद अबू ज़र आ ही गए, पानी लेकर आए, तशनगी से ज़मीन पर गिरे। पैगंबर इस्लाम ने पुकार कर कहा असहाब से पानी पिला दो। अबू ज़र ने इशारा किया, या रसूलल्लाह मेरी पुश्त पर पानी मौजूद है, आपने पिया नहीं। या रसूलल्लाह डेजर्ट है, सहरा है, जब मैं पानी पीने लगा तो आपका ख्याल आया, कहीं मेरा रसूल प्यासा तो नहीं है। इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं इश्क, या कहीं मेरा रसूल तो प्यासा नहीं कि रसूल से पहले मैं पानी पी लूँ, पहले रसूल मेरा पानी पिए, उसके बाद ही अबू ज़र पानी पिएगा। या रसूलल्लाह गए, सोच अच्छा सोचो किसी के बारे में, सहाबी के बारे में अच्छा सोचो, थॉट्स अच्छे हों, सोच अच्छी हो, तो बंदा वैसे ही नज़र आएगा। वो आएगा मुझे सलाम नहीं करेगा, पहले सोचने लगो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन दरमियान में आ जाता है, वो आता है सलाम नहीं करता। पहले सोचो वो आएगा मुझे सलाम करेगा, तो कम से कम पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन आए हमारे दरमियान, वो आकर मुझे सलाम करेगा। नहीं, दुनिया आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे भाग रही है। आप सोचोगे तो मुझे पार्किंग में जगह नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, अच्छा सोच लो मिल जाएगी तो मिल जाएगी। अच्छा तो सोचो, नेगेटिव क्यों सोच रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, माजरत चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला कहता है मा अना इंदा जन्ने अब्दी बी, जैसा बंदा मेरे बारे में सोचेगा मैं वैसा ही उसके लिए काम करूँगा। खूबसूरत हदीस है, इसको एलाबरेट करने की ज़रूरत है। एक मिसाल मैं दे दूँ ताकि मेरे माँ बहनों का हक़ भी अदा हो जाए। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम ने हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल को डेजर्ट में छोड़ा, गैर ज़ी ज़रइन, ऐसा डेजर्ट जहाँ पर किसी चीज़ की उम्मीद नहीं थी, ना पानी और ना फार्मिंग की कोई उम्मीद थी, जहाँ ज़िराअत नहीं हो सकती थी, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते थे, वीरान डेजर्ट, वहाँ पर छोड़ दिया और जाने लगे। हज़रत हाजरा आपके पीछे पीछे जा रही थी, या नबी अल्लाह किसके हवाले, हमें यहाँ क्या करना है, क्या प्लान है। हज़रत इब्राहिम जा रहे हैं, जा रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, जो गोया हज़रत हाजरा के इम्तिहान, ईमान का टेस्ट ले रहे हैं, आगे बढ़े आगे बढ़े। फिर हज़रत हाजरा ने कहा, क्या आपको अल्लाह ने ये हुक्म दिया है। हज़रत इब्राहिम ने सर हिलाया, हाँ, ये खलीलुल्लाह है, जो भी काम करता है बेहुक्म अल्लाह करता है। पता उसके बाद का जुमला क्या था हज़रत हाजरा का, बड़ा खूबसूरत जुमला अजीज़ो, ये उम्मीद पैदा करता है, जब उम्मीद बढ़ जाती है तो उस जगह पर काबा तैयार हो जाता है। हज़रत हाजरा ने कहा, इदन ला युदय्यूना, अगर ये बात है तो अल्लाह हमें इस सहरा में ज़ाया होने नहीं देगा। इदन ला युदय्यूना, इस मकाम पर अल्लाह हमें ज़ाया होने नहीं देगा, बर्बाद नहीं होने देगा। ना तन्हा अल्लाह ने हाजरा को बचाया, इस्माइल को बचाया, उस जगह पर खाना काबा को तामीर करवाया। हाजरा की याद भी आज बाकी है, इस्माइल की याद भी आज बाकी है। थोड़ी देर के लिए अपने आरज़ुओं को, अपनी उम्मीदों को अल्लाह तबारक व तआला से मरबूत करें। अल्लाह तबारक व तआला जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ सब कुछ रख देता है, कुछ भी नहीं था सब कुछ रख देता है। अना इंद, जिसे आठवें इमाम ने फरमाया, जैसे तुम सोचोगे अल्लाह तबारक व तआला वैसे तुम्हारे लिए करेगा, बट कंडीशन ये है।

कि जो हमारे पास नेमतें हैं उसका शुक्रिया अदा करें। आदाब उम्मीद कि उम्मीद को कैसे मैं डेवलप कर सकता हूँ, कई चीज़ें हैं, मेरे पास वक्त नहीं। आठवें इमाम फरमाते हैं तौबा का दरवाज़ा अल्लाह ने खुला रखा है नहीं? तौबा का दरवाज़ा खुला रखने का मतलब क्या है? नजात की उम्मीद है, दुआओं को एक्सेप्ट करने का अल्लाह ने वादा किया है। वो वादा का मतलब क्या है? उम्मीद, कई उम्मीद पूरा होने की, उम्मीद पूरी होने की चांसेस ज्यादा है। अल्लाह तबारक तआला दुआओं कबूल करूंगा, तौबा का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला रखूंगा। हज़रत आदम के लिए अल्लाह तबारक तआला ने कहा तुम्हारी नेकियों पर ज्यादा अज्र दूंगा। दुनिया वाले सलाम ना करें, मेरे काम की तारीफ ना करें, मेरा नाम लेके सलवात ना पढ़ें, लिस्ट में मेरा नाम ना लिखें, बोर्ड में मेरा नाम ना आए, ना आए, ना आए। अल्लाह तबारक व तआला मेरा हर काम देख रहा है, हर काम के मुकाबले में कई गुना अज्र बढ़ा कर अता करने वाला है। रात की तारीकी में होने वाले काम को अल्लाह तबारक व तआला एक्नॉलेज करता है। अज्र मुज़ाफ़ जिसकी ताबीर की गई आठवें इमाम ने, अल्लाह तबारक व तआला इनाम बढ़ा कर देगा। बड़े इनाम की उम्मीद रखो। क़यामत के दिन कभी कभार एक छोटा सा काम इतना बड़ा हो जाता है कि बंदा कहता परवरदिगार ये काम कैसे मैं करके भूल चुका था, कैसे इतना बड़ा हो गया। जी उलमाए किराम नक़ल करते हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा वॉलंटियर काम करने के लिए तैयार हो जाए। जी मफूनज़ुया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो अरबईन मॉडल का काम दारुस्सलाम में होने जा रहा है फ्राइडे सैटरडे संडे, वहाँ वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्टर्स की ज़रूरत है, एक इनक्रेजमेंट की ज़रूरत है उन लोगों के लिए जो काम करते हैं। एक छोटा सा मेरा काम कितना काम आ जाएगा मेरे मरने के बाद मुझे नहीं पता है, छोटा सा काम बहुत काम आ जाता है। अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी किताबें लिखी हैं आपने, जितनी किताबें आपने लिख दी है ना, ये कंप्यूटराइज का कोई फैसिलिटीज़ आपके पास नहीं थी, जितने हाथ से आपने किताबें लिखी है ना, ज़िंदगी भर उतनी किताबें हम पढ़ नहीं सकते, उतनी किताबें आपने लिख दी हैं जी। इन उलमा की तारीफ़ होनी चाहिए, मज़ा होनी चाहिए, अप्रिशिएट करना पड़ेगा जिन्होंने बचाकर सारे लिटरेचर को हमारे हवाले किया। अल्लामा मजलिसी ने अपने दोस्त से एक वायदा लिया, अगर तुम पहले मर जाओ तो मुझे आके ख्वाब में बताना तुम्हारे साथ क्या हुआ, अगर मैं पहले मर जाऊं तो मैं आकर बताऊंगा मेरे साथ क्या हुआ। अल्लामा मजलिसी का इंतकाल हो गया, एक मुद्दत के बाद आप दोस्त के ख्वाब में आए और बताए उनके साथ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, कितना इनाम अल्लाह तबारक व तआला ने दिया, कैसे कब्र में तुम्हारी ज़िंदगी गुजरी, क्या इनाम मिला तुम्हें। अल्लामा मजलिसी ने कहा बड़ी किताबें लिखी, वो सारी किताबें नीचे लिखी हुई थी इनाम में, बहारुल अनवार के मुकाबले में वो नीचे रिवार्ड था। एक काम जो मैंने किया था और मैं भूल गया था, उस काम को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ऊपर रखा है, मुझे बड़ा इनाम मिला। दोस्त ने पूछा वो कौन सा काम था, अल्लामा मजलिसी कहते एक दुकान से मैं कुछ एप्पल सेब खरीद कर घर ले जा रहा था, एक यतीम बच्चे की निगाह उस सेब पर थी, मैं बग़ैर किसी तवज़ के लाशऊरी तौर पर अपनी थैली से उस सेब को निकाला, उस यतीम बच्चे के हवाले कर दिया, मैं चला गया, ना मैंने सोचा था और ना मैंने ख्याल किया था अल्लाह तबारक व तआला ने उस काम को मेरे बहारुल अनवार के ऊपर लिखा हुआ था। मैं क्या बताऊँ आपके, मेरे बहारुल अनवार जो काम था मेरा उसके ऊपर एक यतीम बच्चे के लिए जो मैंने फल दिया था ना, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है और उसका जो मुझे इनाम मिला मेरे सारों कामों से ज़्यादा था, सारे कामों से ज़्यादा था। थोड़ा बंदा अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद लगाए, एक नेकी के बदले कई गुना बढ़ा कर अल्लाह तबारक व तआला अता कर देता है। हज़रत आदम ने कहा शैतान ताकतवर है, अल्लाह बहुत ताकतवर है, वो डिविएट कर देगा, वो गुमराह कर देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा नहीं, अगर गुनाहगार हो गए तो गुनाह के बदले एक गुनाह के बदले एक ही सज़ा है, लेकिन तुम अपने इख्तियार से एक नेकी अंजाम दोगे तो मैं 10 सवाब तुम्हें अता करूँगा। चॉइस इज़ योर्स, मन जाअ बिल हसनते फलहु अशरु अम्सालिहा। अल्लाह तबारक व तआला 10 इनाम उसे देगा हर नेकी के बदले, कभी कभार बेहिसाब इनाम का तज़किरा भी है। तो ख्याल करें हमारे पास क्या है, किन चीज़ों का ख्याल करें, कौन सा काम हमें करना है, नेकी को ज़मीन पर रहने न देना। और आखिरी इमाम की सिफारिश है 10वें इमाम की है शायद, जो नाम मुझे याद आ रहा है,

ज़ोहरी आपके एक शागिर्द हैं, अबू हाशिम ज़ोहरी, जो हज़रत जाफ़र तैयार की नस्ल से हैं। अबू जाफ़र ज़ोहरी आए, मतलब ज़िंदगी में परेशानी, मुश्किलात, माली परेशानी आपकी ज़िंदगी में, आपने आप ये सोच कर आए इमाम की बारगाह में जाऊँगा, शिकवा करूँगा और कुछ मांगूँगा इमाम से, मुझे मिल जाएगा, फिर अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू करूँगा। वो आए इमाम की बारगाह में, बैठे, इमाम के चेहरे को देखा आपने और इमाम ने आपके चेहरे को देखा, अपना मुद्दा भूल गए जी। कभी कभार होता ना, हम रोज़े इमाम में जाते हैं, कुछ सारी दुआएं लेकर जाते हैं, जहां पर जाने के बाद इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं, अपनी दुआ भूल जाते हैं, होता है नहीं ऐसा? गए इमाम के चेहरे को देखा, अपनी हाजत भूल गए। इमाम ने देखा अबू हाशिम ज़ोहरी को और फरमाया, ए अबू हाशिम, जो तुम्हारे पास है क्या तुमने उसका शुक्रिया अदा कर किया है कि नहीं किया है? मौला बता दीजिए कि मेरे पास क्या है। कभी कभार हम सोचते हैं ना, तुम्हारे पास है का मतलब माल है, दौलत है, हुकूमत है, पोजीशन है, मकाम है, कुर्सी है, पावर है, यही तो सोचते हैं ना हम लोग। इमाम ने फरमाया, जो कुछ तुम्हारे पास है क्या तुमने उनका शुक्रिया अदा किया है? कहा, मौला आप ही बता दीजिए मेरे पास क्या है। इमाम ने फरमाया, सबसे बड़ी दौलत जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा ईमान है, तुम्हारा ईमान है। क्या तुमने अपने ईमान की इस नेमत का शुक्रिया अदा किया है? पर मौला दूसरी चीज मेरे पास क्या है? इमाम ने फरमाया, तुम्हारे पास आफियत है और तंदुरुस्ती है। बस स्कॉलर्स ने इस आफियत और तंदुरुस्ती क्यों इमाम ने यहाँ जिक्र किया, इमाम ने बताया, उलमा ने जिक्र किया है, इमाम ने कहा, अब हाशिम तुम्हारे पास तंदुरुस्ती है, तुम उठ सकते हो, चल सकते हो, हमारी बारगाह तक आ सकते हो। कितने ऐसे लोग हैं जो उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, हमारी बारगाह तक नहीं आ सकते, क्या इस नेमत का तुम्हें शुक्रिया अदा नहीं करना है? कितने लोग आ गए मजलिस में, कल रात से मजलिसों में आ रहे हैं, रात में मजलिस में आए, दिन में मजलिस में आए, आप अभी मजलिस में आ गए हैं। किसी ने मुझसे पूछा, मौलाना सब्र किसे कहते हैं? मैंने कहा, मेरी मजलिस में आना, हुसैन की मजलिस में आना, 40 मिनट मेरी तकरीर को सुनना सब्र है। बात पहुंच रही है आप तक? 40 मिनट आकर बैठकर मेरी तकरीर को सुनना सब्र है। का शुक्र किसे कहते हैं? का एक मरतबा सुनकर दोबारा आना, ये शुक्र है। एक मरतबा सुन के भी दोबारा आप मजलिस में आ गए, चलो मौलाना को सुनते हैं, ये शुक्र अदा कर रहे हैं आप जी, ये सब्र है और शुक्र है। क्या तुमने इस नेमतों का शुक्र अदा किया? तंदुरुस्ती, यहाँ तक आना, इमाम बारगाह में बैठना, मजलिस से आज़ाद तक आ जाना, ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत नहीं है क्या तुम्हारे लिए? जी बहुत बड़ी नेमत है। क्या तुमने शुक्रिया अदा किया है? ईमान नेमत है, उसका शुक्रिया अदा करो। तंदुरुस्ती और आफियत नेमत है, उसका शुक्रिया अदा करो। और तीसरी नेमत जो इमाम ने बताई वो क़िनाअत है, वो कंटेंटमेंट है। क़िनाअत तुम्हारे पास है, तुमने लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाया, अपने फ़क्र का शिकवा नहीं किया, अपनी कमज़ोरी का शिकवा नहीं किया, ये क़िनाअत है, नेमत है अल्लाह तबारक व तआला, क्या तुमने इसका शुक्रिया अदा किया? मौला क्या कहना चाहते हैं आप? कई नेमतों का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें और कुछ अता करेगा, और बहुत कुछ अता करेगा। जो जुमला इमाम का है वो झिंझोड़ने वाला है। इमाम ने फरमाया, कहीं ऐसा ना हो नेमतों का शुक्रिया अदा किए बग़ैर मेरी बारगाह में अल्लाह का शिकवा करने आ गए कि अल्लाह ने मुझे ये नहीं दिया, अल्लाह ने मुझे वो नहीं दिया। जिसे ईमान मिल जाता है उसे सब कुछ मिल जाता है, जिसे तंदुरुस्ती मिल जाती है उसे सब कुछ मिल जाता है, जिसे क़िनाअत का शरफ मिल जाता है उसे सब कुछ मिल जाता है। इससे बढ़कर क्या नेमत है? क्या इश्क़ अहले बैत से बढ़कर भी कोई नेमत है? क्या मोहब्बत अली से बढ़कर भी कोई नेमत है? क्या ज़ियारत इमाम अली ने रिदा अलैहिस्सलाम की तौफीक से बढ़कर भी कोई नेमत है? अल्लाहु अकबर। इस एक नेमत का शुक्रिया बंदा ज़िंदगी भर अदा करता जाए अदा नहीं कर पाएगा। मेहनत करें, ज़ियारत पर जाएं और उसके बाद उम्मीद लगाएं, उम्मीदवार हो जाएं अताए इमाम पर। इमाम का जुमला मशहूर है, हदीस है, जो मेरी एक मर्तबा ज़ियारत करता है, जो एक मर्तबा मेरे घर आता है, मैं 3 मर्तबा उसकी ज़िंदगी में आऊँगा। सकरात के मौके पर वो मुझे देखेगा, नामाए आमाल के तकसीम के मौके पर वो मुझे देखेगा, और पुले

0: पर्दे के पीछे से देखने के बाद भी डर रहा था कि कहीं नजर न लग जाए।
1: खुशहाल रहो बरखुरदार के खुद ही शिकार किया और अभी भी बेखबर हो।
2: बहुत खूब के यजीद के चंगुल से बची और फौज की कमांडर को फंसा लिया। मेरी बहन मेरी तरफ देखो।
3: जालिम के सामने जरूर आता है। एक बात जान लो, सामिया ने इस खानदान को बेटा नहीं दिया बल्कि इससे बेटी ली है।
4: मैंने मक्का जाने वाले कारवां में पहले से ही दो जगह खाली रखी है।
2: बाबा आपने मेरी मुहाल आरज़ू को मुमकिन बना दिया।
5: किसे ढूंढ रहे हो नाइम?
4: कूफे का चप्पा चप्पा तलाश करो और उसे ढूंढो। जब तक मिल ना जाए वापस ना लौटना।
1: अम्मी से मुलाकात नहीं करना चाहते।
6: चाहता हूँ लेकिन दादाजी आप।
1: औहद क्या?
6: हमेशा अम्मी पर चिल्लाते रहते थे आपकी तरह, इसलिए वो चली गई है।
3: जाओ खत उसके मालिक तक पहुँचाओ, शायद दूध बख्श दो।
4: बीवी की तलाश में आए हो, देर कर दी। उसे राम करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, खुद उसे राम कर दिया।
1: राम कर दिया तो अभी कहाँ है मेरी बीवी, कहाँ है वो?

0: बड़ी बेबसी है। अफसोस कि मैं उनका कुछ नहीं कर सकता।
1: उसकी कब्र का तो निशान भी नहीं है कि मैं उसके पास जा सकूं। जब तक थी दिल को बड़ी धारस थी, मैं कितना बेगैरत इंसान हूं।
0: बच्चों का क्या करूं,
1: जुदाई का दर्द कैसे बर्दाश्त करूं। काश मैं पैदा ही ना होता मां।
0: कैसे पता, शायद आप उससे ज्यादा परेशान हो और मुझे पता ही ना हो। अभी आपकी जुदाई का जख्म नहीं भरा था कि उसने आपकी कनीज से शादी कर ली और ये बेटी भी हो गई।
1: आपकी मजलूमियत मुझे मार डाल रही है कि आपका मकाम भी एक कनीज ने ले लिया। इस बदकिस्मती और मजबूरी से तंग आ गया। मुद्दा तो ना समझी के रास्ते पर चलता रहा, ना कुछ कहा ना कुछ सुना। माँ दुआ करिए कि अलवान के सामने खुद को बहादुर बाप दिखा सकूं,
0: ताकि एक बेटा आप में से सीखे कि बेजा किसी की इताअत नहीं करनी चाहिए।
1: कहा नहीं

0: पांच सिक्के तुम्हारे और एक सिक्का मेरा, तीन सिक्के तुम्हारे लिए, दो सिक्के मेरे लिए, काफी है?
1: कम है।
0: सब ले लो, अकेले ना खाना। जो काम भी करो अपने भाई का ख्याल रखना, उसका हिस्सा ना भूलना।
1: क्या इतने सिक्कों से?

0: शाम जा सकते हैं दादा जान।
1: मैं जो कहता हूँ अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते, पूछते हो कैसे? बजाय उसके कि सफर की तैयारी करो और सिक्कों को बर्बाद करो। उसका आधा सिक्का नामुसान को दो और बाकी में खुद ऐश करो।
0: शुक्रिया।
1: दो सिक्के तुम्हारे, दो सिक्के मेरे।

0: Ramsey. Ike.
1: सलाम
2: सलाम
1: आप तीरंदाज है ना
2: हाँ
1: वाकई तीरंदाज है
3: तुम भी तो तीरंदाज हो प्यारे बच्चे
1: हाँ मैं चाहता हूँ कि बड़ा होकर एकदम इनकी तरह मुहाफिज बनूं
0: अरे बेटा मना किया था ना मुहिबे अली के सिवा किसी से बात मत करना चलो यहाँ से जल्दी चलो जल्दी
4: हज का तवाफ सख्त है और तुलानी भी ये अंजाम देना है ये नहीं उसमें कहीं तवाफुन दिशा न भूल जाना कि मेरी बेटी ना महरम रह जाए
5: जनाब आहर ये अभी जवान भी है और काफी समझदार भी है
2: शुक्र खुदाया मेरा पहला हज नहीं है अगर अल्लाह ने चाहा तो तमाम आमाल को अंजाम
4: इंशाल्लाह

0: का ख्याल रखना।
1: फोफी।
0: बोलो बेटा।
1: अगर हमारी अम्मी मिले तो उनको ये खत दे दीजिएगा।
2: उन्होंने बताया नहीं था कि वो शाम गई हैं। कुर्बान जाओ, खाने खुदा कहाँ और शाम कहाँ?
1: ये नहीं बताया कि कहाँ जा रही है, बस बताया कि सफर पर जा रही है।
2: ये खत अपने पास ही रखो, लेकिन वादा करती हूँ कि अगर तुम्हारी माँ से मिली तो उनका हाथ पकड़ कर घर वापस ले आऊंगी। वादा।
0: अलवान बेटा, मेरे पास आ जाओ। उसी ने वादा किया है ना बेटा। अब परेशान मत हो तुम, शाम तक खत को भेज देंगी ताकि तुम्हारी माँ तक पहुँच जाए। ठीक है।

0: सवारियां आमादा कर ले, जाने का वक्त हो गया है। चल चलो।
1: तैयार हो जाओ।
2: परेशान हो? कोई बात बुरी लग गई क्या?
3: नहीं, तय ये था कि घर वाले खुदा हाफिजी के लिए आए, ना कि ये।
4: माल कुफ्र वला यबका मा जुल्म। शायद कोई हुकूमत कुफ्र के साथ बाकी रह जाए, लेकिन जुल्म के साथ टिक नहीं सकती।
5: जुल्म के साथ टिक नहीं सकती। जुल्म मिट के
6: रहेगा। जुल्म मिट के रहेगा।
5: जुल्म मिट के रहेगा।
7: खामोश हो जाए, शोरगुल से कोई काम नहीं बनने वाला। कोई एतराज है तो गवर्नर से बात करनी होगी, नहीं तो उससे ऊपर अपनी बात को पहुंचाएं। हम सिर्फ यहाँ निगहबान हैं और ये जिंदान है, दारुल हुकूमत नहीं। जाए यहाँ से, चले जाएं, चले जाएं।
4: इब्ने ज़ैद, तुम अलवियों के दस्तरख्वान के टुकड़ों पर ही पले बड़े हो, नमक हमारा खाते हो और तुम उन नासेबियों की तरफदारी कर रहे हो। हाँ,
8: अगर जनाब हम रह गए तो कयामत आ जाएगी। चले जाओ यहाँ से।
9: क्या बकवास कर रहे हो? कबीले के नौजवान बिला वजह कैद हैं और तुम्हें तो मैंने बचपन से ही पाला है। तुम चाहते हो कि तुम लोगों की आवाज दबा दो? कब तुम्हारे दिल रोशन होंगे अल्लाह ही जानता है।
4: हे इब्ने ज़ैद, तुमने थोड़े से सिक्कों के एवज में खुद को बेच डाला, अपने बीवी बच्चों का पेट बेगुनाह कैदियों की दाद और फरियाद से भर रहे हो तुम। क्या सुन्नत नबी से यही सीखा है तुमने?
9: सिक्के चाहिए, ये लो,
4: ये लो,
9: ये सिक्का लो और अपना रिश्ता तोड़ दो। हुकूमत तुम्हारी वजह से टिकी है,
4: ये लो।
9: तुम अगर यहाँ रुकावट ना बनो तो ये हुकूमत ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। हटो यहाँ से, हमारे रास्ते से हटो।
4: खात्मा होगा, जुल्म का खात्मा होगा। जुल्म मिट के रहेगा। जुल्म का खात्मा होकर रहेगा।
2: इस बच्ची का ख्याल रखिएगा।
4: दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा तोड़ दो। तोड़ दो दरवाजा।
2: इन हाथों का अल्लाह के घर को छूना वो सआदत है जो हर किसी को नहीं मिलती। मेरी बेटी नायला, वहाँ पहुँच के मुझे भूल ना जाना तुम। अगर दिल तंग हो और इस कनीज की आगोश ना मिले तो ये शाल पहन लेना, ये मेरी याद दिलाएगी तुम्हें। तुम्हारे वापस आने तक ये तुम्हारे हाथों अमानत है। ये पहला कपड़ा है जो तुम्हारे वालिद ने मेरे लिए खरीदा और मुसलमानों के मुताबिक मेरे पर्दे का इंतज़ाम किया। ये नायला की सबसे कीमती अमानत है जो तन्हाई के वक्त आपका पूरा साथ देगी। जल्दी आ जाऊंगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
4: अल्लाह की नुसरत और फतह करीब है। अल्लाह की नुसरत और फतह करीब है।
10: Ah!
1: क्या हुआ?
8: सुनिए, गजब हो गया।
9: ठीक से बताओ क्या हुआ है।
8: लोगों ने, यानी अलवियों ने गजब ढा दिया, जंदान का दरवाजा तोड़ के कैदियों को रिहा कर दिया है।
9: जल्द से जल्द दरवाजा बंद कर दो, कोई यहाँ से बाहर न जाने पाए।
10: कहा सब लोगों को मायूस हो जाना चाहिए कि जनाब नुमान को हुकूमत चलाने की कुदरत नहीं है। जिंदान के दरवाजा टूटने का खाना है खुदा के मुसाफिरीन से क्या रब्त है?
11: हज का कारवां है ऐ मर्द मुसलमान, देर से निकलेंगे तो रात हो जाएगी।
12: हमें ना रोको अमीर, जानते हैं आज के दिन के लिए कितना इंतजार किया है हमने।
8: अल्लाह के घर जाना हमारे लिए हराम क्यों करते हो?
11: मगर ये तो कोई बात नहीं हुई।
9: जनाब अमीर जल्दी करें, कारवां में जनाब औहद की बेटी भी है, कारवां में कोई भीड़ नहीं है। जनाब औहद, आप कुछ कहते क्यों नहीं, इसका कुछ तो हल निकालिए।
13: अगर छोड़ रहा हूँ तो फकत जनाब औहद को।

0: जल्दी से दरवाजा खोल दें, चलें आगे बढ़ें।
1: चलो चलो यहाँ से।
2: अगर छोड़ रहा हूं तो फकत जनाब।
0: हिलाल, अपनी अमानत तुम्हें सौंप रहा हूं। खुदा हाफिज बेटी।
3: इससे पहले कि माहौल खराब हो बेहतर है हम रवाना हो जाएं।
4: लेकिन आया तो अभी तक नहीं आई।
3: बहुत इंतजार कर चुके हैं।
0: चले छोड़े उन्हें, चले चले चले चले
5: चले अभी तो कोई नामा बरदार भी नहीं मिला।
0: चले छोड़ो उन्हें, चले
4: संभल के जाना।
3: इससे ज्यादा रुकना ठीक नहीं है, चले सवार हो जाओ।

0: चले
1: चले अभी तो कोई नामा बरदार भी नहीं मिला
2: चले मेरे पास आ जाओ तुम
0: छोड़ो उन्हें चले
2: तुम ही आ जाओ संभल के जाना
3: इससे ज्यादा रुकना ठीक नहीं है चले सवार हो जाओ
4: किस फासिद को ढूंढ रही हो
5: फासिद खुरासानी अरब में ही था अजम था बड़ी बड़ी आंखें और कद आप ही की तरह था
4: पहचानता था
5: पहचानते थे यानी यहाँ नहीं है
4: बाबा जरा आप जरा सब्र करें हम सबको आजाद करवाएंगे
6: बहन दरअसल बात यह है कि काफी दिनों पहले उसे यहाँ से ले गए
0: यहाँ नहीं रुकना चाहिए
5: ले गए है कुछ बताया नहीं
6: इस जिंदान की अज़ियतें सख्त भी हैं और जानलेवा भी
4: यहाँ से चली जाए
5: क्या मतलब
4: इतनी सख्त है बहन कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इस बच्ची को यहाँ से लेकर चली जाइए
7: अभी यहाँ नहीं रुक सकते अभी यहाँ से चलना चाहिए

0: ज्यादा मेहरबान खुदा, इनका सफर बखैर हो। यह आपकी अमानत है या अली, या अली।
1: मैं नहीं जाऊंगा। कहा ना आपसे,
2: बस करो।

0: वहां जाकर बहुत अच्छा लगा।
1: काश मैं उसके पास होता।
2: तुम अब ये कह रहे हो इलाल? ये तो कारमा चलने से पहले बोलना चाहिए था ना।
1: बात बहुत आसान है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मर जाऊं, लेकिन मुंह ना खोलूं कि क्या देखा और क्या हुआ।
2: जितना भी ज्यादा सख्त हो, तुमसे सुनना फिर भी आसान था। कम से कम एक सहारा तो था, अब वो अकेली रह गई। पता नहीं क्या होगा उसका।
1: एक तरफ बासित की मौत की बेखबरी थी, दूसरी तरफ तुमसे निकाह करने का मसला। अगर मैं मुंह खोल देता तो हमारा निकाह मुमकिन नहीं होता।
2: अच्छा, निकाह के बाद क्या मुश्किल थी?
1: बाद में मैं नहीं बता सका।
2: वाकई ये इंसाफ था। जरा एक बार खुद को उसकी जगह रखकर सोचो। सिर्फ उस खत की वजह से तो बच्चे यतीम हो गए और एक औरत बेवा हो गई। कुछ भी हो, जिस माँ को मैं पहचानती हूँ वो अपने दामाद के मरने पर इफ्तिखार भी करती है। बासित की मौत के अलावा भी कोई बात छुपाई है तुमने मुझसे? हिलाल, तुम ही मेरी पनाहगाह हो। मेरी दुनिया में ऐसे ही बहुत बेअमनी और तन्हाई है, अब जो है उसको खराब ना कर देना।
1: सोच रहा था कि शादी की रात मैंने हुज्जत तमाम कर दी, लेकिन अभी भी मुझ पर शक है।
2: दरख्वास्त मेरी तरफ से नहीं थी कि आप पीछे हट जाएं।
1: वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम कुर्बानी चाहती थी और मैंने कहा बिस्मिल्लाह।
2: ये क्या बेरुखी है हिलाल? तुम्हारे ख्याल में अगर मैं किसी और का इंतखाब करती तो क्या वो इनकार कर देता? शाबाशी हो मुझ पर कि गुरूर और इज्जत दोनों एक जगह बर्बाद करती।

0: सही तो यह है कि कोई भी मुझे मेरी माँ से ज्यादा नहीं पहचानता। मैंने गैरतमंदी से अपने दिल लगने के बारे में जितना भी उनको बताया, उनको यकीन नहीं आया। वो भी चिल्लाती रही, हिलाल अपने दिल की बात मत सुनो। सही कह रही थी, मैंने अपने दिल की बात नहीं सुनी। मेरे पास जो कुछ भी था सब तुम्हारे इश्क पर कुर्बान कर दिया। अब देखना यह है कि मैदान में जीत किसकी होती है, तुम्हारी या मेरी।
1: जीत उसी की होगी जो ज्यादा कुर्बानी देगा।

0: क्या हुआ?
1: कुछ नहीं जनाब, मैंने पूछा कि इन दोनों रास्तों में क्या कोई फर्क है। जवाब मिला कि एक रास्ता हमवार है लेकिन लंबा है, दूसरा ना हमवार है लेकिन जल्दी पहुंचाएगा। हमारा काफिला वहीं से जाना चाहिए।
2: चलें आगे बढ़ते हैं। वहां देखिए, वहां जमीन पर कुछ पड़ा हुआ है।
0: देखो क्या है।
2: हाय हाय हाय है।
3: कोई सामान भी है?
2: हाँ है।
3: यकीनन उसका कोई मालिक रहा होगा। भेड़िये का निशाना बन गया होगा या सांप बिच्छू का।
0: आसपास देखो कोई मौजूद है?
2: हे,

0: यह मर चुका है, लगता है यहीं पे इसने दम तोड़ा है। यकीनन गर्मी और भूख से भरा होगा।
1: ऐसी बात करो जो समझ में आए मोमिन। अगर बयाबा की गर्मी में ऊंट मरने लगे तो हम और तुम कैसे बचे हुए हैं?
2: यहाँ एक लाश पड़ी है, शायद यही उसका मालिक हो।
1: लगता है भाग रहा था, किसी ने मार डाला।
3: अल्लाह किसी की ऐसी मौत ना लिखे।
2: मुसलमान होने के नाते हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। शायद कोई आए और इसे पहचान कर इसके घर वालों को इसके बारे में इतला कर दे।
4: अगर दो दिन ये ऐसे ही धूप में पड़ा रहा तो इसकी शक्ल और सूरत का नामो निशान मिट जाएगा। फिर कैसी निशानी और कैसी इत्तला। क्या कर रहे हैं आप? जनाजे का एहतराम जरूरी है।
5: ये गला घोटने का निशान है। बिच्छू से पहले किसी ने इसको मार दिया है। तुमने रास्ते के बारे में क्या बताया था?
1: अल्लाह का कुरान थोड़ी है, जो जिस रास्ते के बारे में जानता है वही इंतखाब करता है। ये वाला रास्ता एक घंटा जल्दी पहुंचाता है और उसका कारवां सरा मेरा जानने वाला है। अभी तक जिसने भी सफर किया है इसी रास्ते से गए हैं।
5: ये लाश और मरा हुआ ऊंट दोनों बहाना है। ये लोग चाहते हैं कि आधी रात को हम पर हमला करें। हमें आम रास्ते से नहीं जाना चाहिए।
1: काफिला सालार तुम हो या मैं? तुम जो मुहाफिज कमांडर हो और नौकर चाकर लेकर चल रहे हो, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो तुम्हारे दबाव में आकर काफिले का रास्ता बदल दूं।
5: लुटेरे चाहते हैं कि हम डर कर रास्ता बदल लें ताकि आराम से वो हमें लूट सके। लेकिन अक्ल कहती है कि लाश और घोड़ों के पैरों के निशान को हमें बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए।
2: बात तो सही कह रहे हो इलाल, लेकिन मिट्टी से पता लग रहा है कि इस रास्ते में बिच्छू है और अगर बारिश हुई तो हर जगह से बिच्छू निकलेंगे। ये रास्ता ज्यादा अमन वाला है।
5: बिच्छुओं से मुकाबला लुटेरों और राहजनों के मुकाबले से आसान है।
1: इतने साल हम गए, कोई लूट मार नहीं हुई। इस बार आप लोग आ गए तो रास्ता ना अमन हो गया।
5: मेरे साथ मेरी नई दुल्हन है जिसे मैं दांव पर नहीं लगा सकता। मैं और मेरे आदमी उस रास्ते को इंतखाब करेंगे।
2: ये दूसरा रास्ता कारवां सरा से बस एक मंजिल दूर है। मेरी राय तो इस जवान के साथ है। मेरे ख्याल से तो रास्ता बढ़ा लेना बेहतर होगा ताकि हम खतरे से बच सकें।
3: डरता हूँ कि कहीं मर न जाऊं और खाना काबा न देख सकूं।
5: मैं आप लोगों को खाना काबा तक पहुंचाऊंगा।
1: जैसे तुम सब कोई मेहमान हो और मैं इनके घर का नौकर। और तुम अब अगर किसी को एक कांटा भी चुभा तो तुम जिम्मेदार होगे।
5: मुझे कबूल है।
2: इस जिम्मेदारी को हल्का मत समझना।
5: परेशान ना हो, इत्मीनान रखे। बच्चे को यहाँ से ले जाए। चलो।

0: शुक्रिया। हाँ, अभी निकल रही हूँ।
1: खुदा तुम्हारे मरहूमी की मग़फ़िरत करे। ये सब काम छोड़ दो बेटा, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, इसकी तिजारत हराम है। इतना लंबा सफर करते हो, बयाबा की सख्तियाँ भी बर्दाश्त करते हो और ये हराम काम अंजाम देकर हवा में उड़ा देते हो।
2: तुम मेरे और खुदा के हिसाब किताब में दखल न दो।
0: बैठ जाओ, अपना पैर दिखाओ। ओह, कोई तीर तो नहीं लगा?
3: कुछ हुआ तो ना?
0: देखो, ये था पैर में। मेरा बच्चा तो बड़ा बहादुर है।
4: खुदा तुम्हें सलामत रखे। तुम्हारे बाबा को मैंने बहुत करीब से देखा था। जो होशियारी बयाबा में तुमने दिखाई थी वो मेरे जहन में भी कभी नहीं है। फिलहाल तुम बिल्कुल अपने बाबा की तरह हो।
5: मैंने कुछ भी नहीं
6: किया। अपने सामान को जमीन से उठा लो।
7: ये माजरा सुनकर उसने बताया कि पिछले हफ्ते दर्रों के दरमियान एक काफिला फंस गया था। हमारे साथ भी ऐसा ही होता पर हम बच गए।
4: खुदा सब बेहतर करता है।
6: नामुनासिब वक्त आए, सिर्फ दो ही कमरे खाली बचे हैं। आपके साथ महरम और नामहरम को मिलाया जाए तो आपको ज्यादा कमरे चाहिए होंगे।
4: तुम्हारी उम्र तुलानी हो, तुमने बैतुल्ला के जायरीन को पनाह दी है। अल्लाह जानता है कि मजबूरी थी, कुछ दिनों की जहमत कबूल कर ले।
6: लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने आज तक किसी मेहमान को जमीन पर सुलाया हो। आप तो देख ही रहे हैं, हर जगह पर मुसाफिर ठहरे हैं।
4: फकत दो ही कमरे बाकी हैं
6: जी, आप ही देख लीजिए।
7: बस एक कमरा लड़कियों और माओं के लिए और एक हिलाल और उसकी जौजा के लिए। तुम्हारी नई नई शादी हुई है?
4: नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हिलाल, तुमने हमारी जानें बचाई हैं। एक रात आराम से सुना तो कोई मसला ही नहीं।
7: हाँ, ये आराम से रहो। आराम से रहो।
4: शुक्रिया।
7: शुक्रिया।

0: यही सब कुछ है।
1: शुक्रिया। अब इत्मीनान से नकाब उतार लो और आराम करो। किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे देना।

0: इस तरह किसी को छुपकर नहीं देखते।
1: आपने वादा किया था कि पहुंच जाएंगे तो हिलाल की कमान को अपने हाथों से छू सकूंगा।
0: सही कह रहे हो। आओ, ये लो।
2: बाबा जान आइए।

0: क्या यहाँ का मालिक जानता है कि तुमने कौन सा खजाना उसकी जमीन में दफन किया?
1: अगर तुम अपना मुंह बंद रखो तो कोई नहीं समझ पाएगा जो एतराज करे।
0: अपने साथ दूसरे बच्चों, औरतों और मर्दों की भी जान का ख्याल रखो।
1: सबसे पहले तो मैं अपने बीवी बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि हर बिच्छू 100 सिक्कों का है।

0: भाई सुनो, एक सवाल है मगर उसका जवाब मेरे और तुम्हारे दरमियान ही होना चाहिए। अमन और अमान की अहमियत इतनी ज्यादा है कि इंसान बगैर उसके रात को ठीक से सो नहीं सकता। लुटेरों का खतरा हो तो मैं अपने मुहाफिजिन से कह दूं।
1: आराम से रहिए, 40 साल हो रहे हैं इस कारवा सरा को लुटेरों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।
0: एक दूसरी जहमत भी देनी थी
1: जी, बताइए।
0: रात को हमने रास्ता बदल दिया था, अब डर है कि कहीं रास्ता ना भटक जाए। सुबह को हमें सही रास्ते की निशानदेही कर देना
1: जी। हम जरूर मदद करेंगे।

0: मैंने कहा मैं उन्हें कल वापस कर लूंगा। कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा जब मेरी निगाहें खानाए काबा पर पड़े तो मैं दुआ करूं।
1: ए मेरे खुदा, कितना खूबसूरत है ये। काफी सहमत हो गई। यहाँ अच्छा लग रहा है?
0: अच्छा लग रहा है।
2: या अल्लाह, कितना अच्छा हो गया। अकेले क्यों, किसी की मदद ले लेती?
1: सब थके थे, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी।
2: खुदा जज़ाए खैर दे, काफी साफ हो गया।
1: अलबत्ता एकदम अकेली भी तो नहीं थी।
2: बहुत खूब, शुक्रिया छोटे कमांडर।

जाइए, सब लोग उठ जाइए, अपना बिस्तर से बैठिए। चलिए या खुदा आ जाइए, इतनी तेज बारिश। उठ जाओ, उठ जाओ।

0: चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है।
1: मेरे साथ चल, आराम से, आजा आजा आजा। अरे संभल,
0: चल रहा है।
1: हिलाल,
2: रुको अभी आ रहा हूँ।
1: हिलाल,
2: हाँ आया।
0: चल रहा
1: है।
2: क्या हुआ?
3: लगता है बारिश की वजह से सभी जमीन के कीड़े मकोड़े बाहर आ गए।